श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

ये विविध भारती है। हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखार

0: अरेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। प्रस्तुत है वंदनवार, आइए सुने भक्ति संगीत।

विविध भारती से झरोखा में लीजिए सुनी हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओ अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 259। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक और संगीतकार रविंद्र जैन। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। 7:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मनोज कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

दिन में 10 बजे पिटारा लाएगा आपका पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। 12 बजे होगा कार्यक्रम, 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 2:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिएगा फोन इन प्रोग्राम हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा में आप सुनेंगे गीतों भरी कहानी, कहानी जिंदगी की यही रीत है। आपको सुनवाएंगे लेखिका रिद्धि चोरड़िया, वाचन और संपादन नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 5 बजे आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:05 से इसी कार्यक्रम का प्रसारण आप सुन सकेंगे। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम आप सुनेंगे।

शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला घुंघरू की तरह आप सुनेंगे। 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के

अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल, सुनिएगा हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक बिजेंद्र मोहन। रात 9 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है हमारे सारे कंपोजर्स ने। खास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने भी बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए मेरा सांवरिया, है ना
1: जी? जी,
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने हैं उन्होंने,
2: बहुत गाने
1: यमन में बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से। तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस, खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे, और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूँ तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने,
0: जी
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए हैं, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने।
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है।
0: जी
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, बस
0: क्या
1: अनुराग
0: बात,
1: सबसे
0: क्या
1: अच्छा राग
0: कहने,
1: है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुधः, जो चित्त का रंजन करे, उसकी
0: वाह,
1: परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना, जो
0: जी।
1: उसके पसंद है ज्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे जो उसमें है, कई कई राग जो इस तरह के हैं ना, जो माइनर नोट्स में है। भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं। उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है।
0: जी
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ।
0: हाँ, सिचुएशंस की भी अपनी
1: हाँ
0: दरकार होती है। लेकिन आप कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया
1: जी
0: हो और
1: जी
0: आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत का जिक्र चला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी जरूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे?
1: यूं तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है,
0: जी
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का, कलाकारों का ये कहना है कि कोई जरूरत नहीं है शास्त्रीय संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा के सिचुएशन पर गा दिया जाए। तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में है,
1: हाँ उसी मतलब इंडस्ट्री
0: हाँ
1: को बिलोंग करता
0: जी
1: हूँ। और
0: जी
1: लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उम्र जो है ना, वो हर एक की अलग अलग
0: जी
1: है ना,
0: जी
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20
0: जी जी
1: है ना,
0: जी जी
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना, वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए,
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं,
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात
1: गाना
0: है।
1: नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा फिर कहीं जाके दब
1: हाँ
0: गया और
1: ठीक है
0: खत्म हो
1: बस,
0: गया।
1: मगर मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज़ पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं,
0: जी
1: उसको खराब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है
1: बिल्कुल
0: अगर एक
1: बिल्कुल, उसके
0: संपूर्ण
1: सिवा
0: गायक
1: तो
0: बनना
1: रास्ता
0: है, इसके
1: जी
0: सिवा कोई रास्ता नहीं।
1: जी
0: चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई, श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पे कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं, साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

फिल्म अमानुष का गीत था किशोर कुमार का गाया, इंदिवर के बोल थे श्यामल मित्रा की तर्ज थी। फिल्म छोटी सी मुलाकात, लता मंगेशकर की आवाज़।

शैलेंद्र का लिखा गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

ही पता।

गीता दत्त को आपने सुना, फिल्म थी श्रीमती 420, जानुसार अख्तर की बोल थी, ओपिनियर का संगीत था।

0: पारंपरिक भजन आप सुन रहे थे वसंत देसाई की तरफ से, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म थी तूफान और दिया।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके,

0: पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया, एक और आ गया।
2: गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

मुकेश की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भूले बिसरे गीत श्रोताओ यहीं संपन्न हुआ। ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना। हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गीत था शंकर जय किशन का सर्वदिक्या। हम मेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिकीय ये गीत आप सुन रहे थे।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
3: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
2: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?

0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
1: सखी सहेली।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

श्यामल मित्रा की तर्ज थी इंदिवर तिल का गीत आपने सुना। आनंद आश्रम फिल्म का ये दो गाना था, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। हमेरा ही प्यार के श्रोताओ, ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
5: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
4: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
6: दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
7: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
9: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री

0: सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
1: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती, उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक था।

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्व मिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए करना होगा बस थोड़ा सा इंतजार श्रोताओं।

बहुत स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में विविध भारती की सुलहरियों पर आ चुका है। ये पसंदीदा प्रोग्राम चित्रलोक, आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने सभी श्रोताओं का।

0: मोहित चौहान की आवाज में इरशाद कामिल की रचना आपने सुनी। ए आर रहमान का संगीत था, फिल्म थी तमाशा।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार की आज जन्म जयंती है, और जिन्हें हम जिनका मूल नाम कह सकते हैं कि हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ। 1957 में आई फिल्म फैशन से मनोज कुमार ने अपने अभिनय की शुरुआत की। मनोज कुमार वैसे तो तमाम फिल्मों में नजर आए, लेकिन कुमार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों में अभिनय के लिए खास तौर पर जाने गए, और इसी कारण उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। 1965 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने भगत सिंह की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एक देशभक्त अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1967 में फिल्म उपकार से निर्देशन की शुरुआत की उन्होंने, और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फिल्म पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति उनकी बहुत लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हैं। अभिनेत्री माला सिन्हा, साधना, आशा पारेख और तमाम ऐसी अभिनेत्रियां थीं जिनके साथ उन्होंने अभिनय किया, और इनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। वैसे मनोज कुमार संजीदा अभिनय के लिए भी पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्म फैशन, सहारा, हनीमून, कांच की गुड़िया, पिया मिलन की आस, रेशमी रुमाल, डॉक्टर विद्या, हरियाली और रास्ता, शहीद, और अगर थ्रिलर फिल्म की बात करें तो फिल्म गुमनाम, इसके बाद फिल्म नीलकमल, ऐसी तमाम चर्चित फिल्मों में मनोज कुमार ने अभिनय किया। शशि गोस्वामी उनकी शरीके हयात हैं। हम अभिनेता मनोज कुमार की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं।

नवाब वजीद अली शाह अख्तर की ये रचना आप सुन रहे थे जनिसार फिल्म से, उस्ताद शफाकत अली खान और शेख घोषाल की आवाजों में, मुजफ्फर अली और उस्ताद शफाकत अली खान की तर्ज थी। इस समय विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम।

सनम जी, इस फिल्म का गीत आपने सुना अनिरुद्ध भोला और अरिजीत सिंह के सुरों में। मिथुन की रचना थी और तर्ज भी थी मिथुन की।

फिल्म दंगल का गीत आपने सुना, जानिता गांधी की आवाज थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं चित्रलोक कार्यक्रम। आज फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। श्रोताओ, उनका असल नाम अरुण कुमार चट्टोपाध्याय था। उत्तम कुमार का जन्म कलकत्ता में हुआ। फिल्मों में आने से पहले वो पोर्ट ट्रस्ट के काम को किया करते थे और 1948 में आई फिल्म दृष्टि दान में सपोर्टिंग रोल से उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म बासु परिवार उनकी पहली हिट फिल्म मानी जाती है और अभिनेत्री सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनके साथ उन्होंने कई एक फिल्में की और उनके करियर में कह सकते हैं कि फिर एक नया मोड़ आया। सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बेहद सफल और लोकप्रिय जोड़ी बांग्ला सिनेमा में मानी जाती है। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उत्तम कुमार को मिला। वो एक सफल निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक भी थे। 50 से 70 यानी कि 2 दशकों से ज्यादा एक सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित रहे। उनकी हिंदी फिल्म अमानुष खूब पसंद की गई। कुछ एक और हिंदी फिल्मों में भी उत्तम कुमार नजर आए थे और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा 24 जुलाई 1980 को इस दुनिया फानी से वो विदा हुए। उनकी कुछ एक अगर फिल्मों की बात करें तो सागरिका, एक थी रात, हारानो सूर, पाथे, हेलो देर, इंद्राणी, माया मृग, सप्त दी, बिपाशा, भ्रांति बिलाश, देयानिया, कोकोने मेघ, ये सारी उनकी कुछ अलग अलग फिल्में थीं।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल को आप सुन रहे थे फिल्म वजीर में। विधु विनोद चोपड़ा का लिखा ये गीत था, शांतनु मोहितरा की तर्ज थी। श्रोताओ, विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। एक छोटे से अंतराल के बाद हाजिर होते हैं।

प्रीतम का सर्वदुखिया ये गीत आपने सुना, इरशाद कामिल के बोल थे, उस्ताद राशिद खान की आवाज थी, फिल्म थी जफी मेट। तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत है, गुरु रंधावा की आवाज। गीत और संगीत भी गुरु रंधावा के।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न होता है दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीनत अमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

0: करेंगे।
1: क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती

0: स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छेपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी।
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छेपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मूठी जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मूठी।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा।
0: अच्छा।
1: मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और
0: जी
1: चारों तरफ से यहाँ पे नदियां हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियां हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नट्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन के साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया।
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई, लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ। आपकी जो पेश करने का अंदाज ही, आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये B.R. चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाई। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी। और सर ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहां रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहां पर।
1: बिल्कुल सर जी। और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी गए, मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ। मेरे को ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी, मुलाकात होती।
1: हमारे
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की? बारिश कैसी है?
1: यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार। जी
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी सर प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी। सर,
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय
1: ठीक है,
0: जगन्नाथ
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है, तो
0: जी।
1: मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ। अभी मैं शायरी बोलती हूँ।
0: स्वागत।
1: मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं,
0: वाह
1: जागते आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे
1: जी
0: ये बताइए कि
1: जी
0: आप विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है
1: सर, आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है।
0: जी। कौन कौन से
1: जी
0: कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: सर, मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब भी आप आते हैं। मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं। ठीक है,
0: जी जी
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत
0: जी
1: अच्छा लगता है। और आज
0: बहुत
1: के
0: अच्छा।
1: फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे हमने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ। आज पूरा
0: अच्छा,
1: ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके, क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है
0: तो आप किस शहर में? आपने कहा आप
1: सर। हम
0: जगन्नाथपुरी में,
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं सर। विविध
0: तो
1: भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही
1: यस
0: आपने
1: सर।
0: बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा बताइए जी, भोपाल के क्या हालचाल हैं?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो
0: जी,
1: आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश
0: जी
1: भी नहीं हुई है,
0: जी
1: हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है,
0: जी
1: भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे,
0: जी
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था,
0: जी
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही वह मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
1: जी
0: हुआ।
1: और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है,
0: अरे
1: ये
0: वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही है सर,
0: जी,
1: बड़े
0: मुझे
1: दिनों
0: भी अच्छा
1: बाद
0: लग रहा
1: फोन
0: है
1: कनेक्ट हुआ है। तो सर विद भारती के बारे में आप कितना कुछ बताऊं उतना कम है,
0: जी।
1: क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम,
0: हाँ
1: और जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो।
0: जी
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, और सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मी पना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी, वो मेरा एक दौर था जब दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है, उसके
0: जी
1: बाद मेरी लाइफ में वापस एक यू टर्न आता है,
0: जी
1: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज ए स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है
0: बहुत
1: सर।
0: शुक्रिया। और आज
1: जी
0: किस
1: जी
0: गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मेरा अभी, क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता
0: नहीं नहीं
1: दूं?
0: बिल्कुल गाइए।
1: रिम झिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर, संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने
1: सर,
0: फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश। हाँ
1: सर जी
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: जी सर, बस बहुत अच्छा हूँ। और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है, बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो बड़ा अचंभा लगा। भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं। इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से एक गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए।

0: हेलो फरमाइश जी,
1: हाँ
0: बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से ही,
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारामन।
0: सीतारमन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में,
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ?

0: बारात किसे पेश करूं, यही वाला गाना।
1: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
0: पहले हम गाते थे लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा, बोल से यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था, बाद में से ट्रीटमेंट किया ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन नहीं चलते हमारा गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
1: जी हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
0: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश
1: मैं
0: जी।
1: कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा, बोलिए कैसे हैं जी।
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है। मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी।
1: जी
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है। इस बार सावन लेट है, तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है।
0: जी, जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के।
0: और इस बरस जो है वो

0: लंबा इंतजार करवा रही है आपको,
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है। लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है।
0: जी बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा अच्छा तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ, अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में,
0: हाँ
1: धीरे
0: हाँ
1: धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और
1: जी
0: बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 02228607 2288 और 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो
3: भारती।
0: रंग तरंग रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज गूंज रही है इस कार्यक्रम की शुरुआत में। डॉक्टर राही मासूम रजा का कलाम है। दिन की इस भागदौड़ में सुबह के 11 बज चुके हैं और इस भीगे मौसम में विविध भारती कुछ गजलों की फुहारें छोड़ रही है आपके नाम।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम चल रहा है और अब गुलजार के बोल आशा भोसले की आवाज एल्बम का नाम दिल पड़ोसी है।

0: निदा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
0: छाया कांगुली की सोंधी आवाज, जमीर काजमी के बोल।

11:47 हो चुके हैं, विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। केके की आवाज

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया,
3: देख 1.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
0: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
0: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोड़ावा जनजाति।

0: कोड़ावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैलपोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैलपोध का क्या अर्थ है।
1: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव,
0: जी
1: यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
0: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहां प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
1: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है।
0: जी,
1: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
0: जी,
1: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
0: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
0: कैलपोध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोध उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था,

0: रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
1: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
2: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
1: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
0: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
1: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
2: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
1: भाई वाह।
2: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
1: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
2: अच्छा,
1: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
2: वाह,
1: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
2: हाँ, ये तो है।
0: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
1: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
2: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
1: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
2: हैं? वो कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता हूँ। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहाँ हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह।
0: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। हाँ, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
2: हाँ, ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
1: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी।
2: हाँ,
1: चलो पहुंचे तो सही।
2: हाँ, वो तो है, लेकिन मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
1: मैं क्योटो देखूंगा।
2: और मैं ओसाका।
1: क्यों नहीं, चलो
2: चलो।
0: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
2: हाँ, चलो।
1: संभल कर, संभल कर।
2: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
1: बचे।
0: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
2: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
1: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
2: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ हाँ चलो।
0: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
3: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया

0: कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
1: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
2: जी।
1: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
2: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
1: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
2: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
1: नमक, लाहौरी नमक।
2: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
1: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ, क्यों भाई नमक नहीं ले जा सकते क्या?
2: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
1: है?
2: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
2: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
2: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
2: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के, जता के लेकर जाऊंगी।
2: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
2: ओहो अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ।

0: गुड़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ, कीनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ। कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
2: जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब।
1: हाँ आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन।

0: यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
1: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

अनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

किशोर फिल्म का गीता को सुना। ये पहचान फिल्म का गाना है।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम में थे मनोज कुमार की कहानी।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम एक ही भारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती का फेसबुक पेज ढूंढने के लिए लिखना है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और आप विविध भारती के टेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे। आज का जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से है, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? नीला। और तुम्हारा? लाल। तुम्हें समंदर पसंद है या वादियां? समंदर में वादियां। ऐसा होता तो नहीं? सोचो कभी ऐसा हो तो। अच्छा, तुम्हें भोर पसंद है या शाम? दोनों। तुम्हें आसमां पसंद है या जमीन? दोनों। अरे घोड़ा चतुर मत करो, किसी एक पर रहो। अच्छा तो मैं एक चुनौती देता हूं, देखते हैं तुम कितनी देर चुप रह सकती हो। ये बात है तो लो, अब मैं तुमसे रूठ गई, जाओ। छोटी सी बातचीत की एक इबारत आज के इस कार्यक्रम का मसौदा, और इसमें वो शब्द

शामिल हैं जिन पर केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम, यानी उन शब्दों से गाने चुनकर आज हम आपको सुनवाएंगे। छोटी सी क्यूट सी बातचीत, और इस क्यूट सी बातचीत में कुछ बड़े प्यारे से शब्द छिपे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस गाने के साथ, और उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ेंगे जो दिल को छू लेने वाले भी हैं और गुदगुदाने वाले भी। तो आप जिस आवाज की परिकल्पना कर रहे थे उसकी बजाय दूसरी आवाज के साथ नीले रंग का गाना।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो, तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रोका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई

एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए, तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे? यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको? और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि नीले से याद आया राजेश खन्ना फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फेहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे, 11 गानों और शब्दों की फहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं, सुरीला सफर में नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेमनगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था। प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूँ, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है। कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का, और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हाँ लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया जाता है, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी, ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है। जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती है कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफी ऊंची होती हैं, लहरों की बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती हैं कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता है जिनका

यह है कि मैंने मुंबई, थाईलैंड, कन्याकुमारी, दुबई, न्यूजर्सी के अंतिम छोर का समुद्र देखा। एक और श्रोता है, समुद्र केवल पानी का विस्तार नहीं बल्कि इंसानी भावना और अनंत गहराइयों का एक जीता जागता दर्पण है। इसकी हर लहर में एक कहानी, एक खामोशी, एक गहरा सुकून छिपा होता है। एक और श्रोता का कहना है कि बारिश के दिनों में हम अपने गांव चले जाते हैं जहां घर के आंगन से ही पर्वत और हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। एक और श्रोता है जिन्होंने गुहागर, रामेश्वर, कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण और महाबलेश्वर में समुद्र का है, गोकर्ण वगैरह का समुद्र देखा। एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि हमारे शहर के आसपास जब अच्छी बारिश होती है तो खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने डैम का पानी लबालब भर जाता है। मां नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती हैं, डैम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दृश्य बड़ा ही देखने लायक होता है। तेज वेग से बहता हुआ पानी, उसकी गूंज, प्रकृति का विराट रूप मन को रोमांचित कर देता है। इसीलिए जब डैम के गेट खुलने की खबर सुनाई देती है तो लोग भागते हैं उस नजारे को देखने के लिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 1973 में मुंबई का समुद्र देखा था और अंधेरी से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल गया था। ओहो, बड़ा लंबा सफर किया आपने। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि कटक शहर के पास एक चिल्का झील है, पुरी, पारादीप, गोपालपुर, चांदीपुर जैसे समुद्र तट हमने देखे हैं। एक और श्रोता कहती है कि हमारे सूरत शहर में इस बार बारिश जो है वो तबाही लेकर आई है। समुद्र का कनेक्शन तो जीवन से है, समुद्र की गहराई और ऊंचाई और उस तरह से हमारे जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे आसमानी रंग पसंद है, जलंधर सिटी में आज बादल नहीं छाए हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमने कोंकण में तार कर ली, देवगढ़, गणपति पुली, आरे वारे, जितने भी किनारे मिले हैं सब देखाए हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना ये है कि जब भी मैं कपड़े सिलवाता हूं तो ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लू कोट सिलवाता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं एयरफोर्स में हूं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनका कहना है कि हमारी नन्ही परी को पर्पल कलर पसंद है। फिर एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि वादियों में थोड़ा नीलापन, गेहूं की बालियों का सुनहरा रंग, थोड़ा तांबई नीम के पेड़ों में सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग, एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहुकता रहता है, मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़कर चलते हैं वादियों की तरफ ये गाना सुनने के लिए। आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं लेकिन अन्ना सागर झील है और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मिनाल का झरना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम वहां जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफर करने वाले थे लेकिन आज गाड़ियां नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मजा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए। और जैसे इस इबारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना, विविध भारती ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मुझे सुल्तानपुरी की बोले ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियां तो हैं पहाड़ और वादियां दूर दूर तक नहीं है। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियां भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहाँ बिताना पसंद है ये बताइएगा।

सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद है, और एक श्रोता है

भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम है, वहां जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किस

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें गोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की,
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहां से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नजर जरूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए, विविध भारती के संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जागते भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: विविध भारती से बोल रहे हैं वंदे मातरम।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम नामक साप्ताहिक पत्रिका का बड़ा योगदान रहा इस क्रांति में। महाराष्ट्र की और देश की स्वाधीनता की लड़ाई की दृष्टि से समाचार पत्रों के इतिहास में जो स्थान लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी का था, वही स्थान श्री अरविंद और बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम पत्रिका का रहा। भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र बन गया वंदे मातरम। लेखनी भी कई बार तलवार से अधिक धारदार बन जाती है और क्रांति कर दिखाती है।
1: 1906 से 1908 के इस काल में इस समाचार पत्र ने जनमानस को सींचा, लोगों के मन को तैयार किया। इसका श्रेय जाता है श्री अरविंद को। इस अंग्रेजी दैनिक ने युवाओं के मन में तेज उत्पन्न किया। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ऐसे दो गुट हो गए और दिसंबर 1907 का सूरत अधिवेशन भंग हो गया। श्री अरविंद ने 12 अप्रैल 1908 के वंदे मातरम के अंक में लिखा था,
2: विदेशी सरकार के पास याचना विनती करके स्वतंत्रता खरीदी नहीं जा सकती। उसके लिए नौकरशाही से युद्ध करने और रक्त बहाने की तैयारी चाहिए।
0: वंदे मातरम समाचार पत्र के कारण बंगाल में आंदोलन को मजबूती मिल रही थी। उसी दौरान एक सभा में वंदे मातरम इस गीत का उल्लेख करते हुए गुरुदास बैनर्जी ने बंकिम चंद्र को ऋषि बंकिम कहकर संबोधित किया। इस सभा में वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े हेमेंद्रनाथ घोष उपस्थित थे। गुरुदास बैनर्जी उच्च कोटि के कानूनविद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उदार शिक्षा के समर्थक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायमूर्ति रानड़े को महाराष्ट्र में जो सम्मान प्राप्त था, वही सम्मान गुरुदास जी को बंगाल में प्राप्त था। सर गुरुदास बैनर्जी जैसे बंकिम चंद्र के समकालीन व्यक्ति और नेता द्वारा बंकिम चंद्र जी का ऋषि बंकिम के रूप में गौरवान्वित किया जाना

0: उनके लिए एक नई बात थी। उन्होंने यह समाचार श्री अरविंद को दिया और तब से श्री अरविंद भी बंकिम चंद्र जी का उल्लेख करते समय ऋषि बंकिम ही कहने लगे। बंकिम चंद्र जी का यह ऋषित्व श्री अरविंद ने ही लोगों के सामने लाया।
1: वंदे मातरम नाम के समाचार पत्र भारत की अन्य भाषाओं में भी निकलने लगे। इसी दौरान पंजाब में पंजाबी भाषा में इसी नाम का समाचार पत्र शुरू हुआ। जनवरी 1908 में हरि रघुनाथ भागवत ने वंदे मातरम नामक पुणे से मराठी समाचार पत्र शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से श्री अरविंद जी के वंदे मातरम के चुनिंदा लेखों का मराठी अनुवाद प्रकाशित होता था। श्री अरविंद के विचारों और लेखन का प्रचार करने के लिए ही ये समाचार पत्र चलाया गया था, परंतु आगे चलकर सरकारी दमन के कारण 1909 के मध्य में ये समाचार पत्र बंद करना पड़ा। मादाम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 10 सितंबर 1909 को यूरोप से वंदे मातरम इसी नाम से समाचार पत्र शुरू किया। उसके संपादक थे लाला हरदयाल। इस मासिक पत्रिका का पहला अंक जिनेवा और रॉटरडम से प्रकाशित किया गया। इसका मूल्य स्वैच्छिक

0: इस पत्रिका के पहले पृष्ठ पर वंदे मातरम ये शब्द समाचार पत्र के नाम के रूप में बड़े अक्षरों में थे और उसके नीचे दो छाया चित्र थे। उनमें से एक था मादाम कामा राष्ट्रध्वज फहराते हुए और दूसरा तलवार उठाकर खड़ी भारत माता। भारत माता के छाया चित्र के नीचे गीता के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक प्रकाशित किया गया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। उसी प्रकार उसके संपादकीय के ऊपर भगवान बुद्ध का यह बोध वाक्य था, हे आनंद, तू ही तेरा दीपक है, बाहर आश्रय मत ढूंढ, अपने परिश्रम से ही निर्वाण प्राप्त कर। इस समाचार पत्र के वंदे मातरम शब्दों के नीचे लिखा था भारतीय संस्कृति का मुखपत्र।
1: लाला हरदयाल ने स्वतंत्र रूप से 1914 में स्विट्जरलैंड से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। 1920 में दिल्ली से लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में वंदे मातरम पत्र शुरू किया। अमेरिका में बसे भारतीयों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए गदर पार्टी के माध्यम से आंदोलन का समर्थन किया। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। वंदे मातरम ही गदर पार्टी का राष्ट्रगीत था। गदर के क्रांतिकारी करतार सिंह और विष्णु गणेश पिंगले वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़े। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारतीयों ने भारत माता संघ शुरू किया और उसके मुखपत्र के रूप में वंदे मातरम खालसा नाम की पत्रिका शुरू की।
0: कुल मिलाकर बंगाल के विभाजन के कारण जो आंदोलन उभरा उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक गति प्राप्त हुई। इसी आंदोलन के कारण वंदे मातरम यह युद्ध मंत्र भारतीय जनता को मिला और उसका प्रभाव आगे उभरे प्रत्येक आंदोलन में बढ़ता ही गया। वंदे मातरम ये शब्द मानो यहां के प्रत्येक भारतीय के जीवन का मूल मंत्र बन गए।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: मातरम एक जय घोष। अभी आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 38वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
2: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
3: ये शाम मस्तानी।
2: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
3: दिल इंसान का एक
2: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
4: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर

0: हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
5: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज़्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
6: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले छह घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथराज और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी।

0: आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

0: बर्बादी की तरफ है समोड़ा।
1: अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंडीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।
0: प्यार बन गई, प्यार बन

डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मन पसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली से मैं बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी उसकी मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना, होते हैं चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का, और ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।

0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
0: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से। जब
1: अच्छा।
0: बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया तो हमारे सहेलियों ने हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
1: ये बड़ी अच्छी बात
0: खुलती गई थी।
1: सृष्टि बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
0: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में तब से सुन रहे हैं। बहुत शौक है मैं रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारे रोना चुप हो जाते थे बंद मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको। हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
1: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और कोई शौक आपके?
0: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहे।
1: ये बिल्कुल सही बात है।
0: अगर पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक
1: है। अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
0: जी जी जी जी जी, जी।
1: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
0: लिख नहीं सकते आप।
1: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
0: जी जी जी।
1: सृष्टि जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज आप सुनना चाहती हैं वो बताएं।
0: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
1: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।
2: सपनों में अगर

0: हेलो सहेली।
1: हेलो साहिल, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: दीदी, जिला सागर है, मध्य प्रदेश, ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी कक्षा 8वीं में।
0: कक्षा 8 में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं दीदी, हम चित्रकूट में पढ़ते हैं दीदी, हम दिव्यांग हैं तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है दीदी। दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है, तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन
0: जी,
1: 5वीं तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर 5वीं के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी?
1: जी दीदी।
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वही उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: जी दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है,
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: जी दीदी।
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई ये माँ तेरे बिन, ओ मैं तुझे ढूंढू मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सूना है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ।
0: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
1: जी दीदी।
0: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
1: मूवी का नाम है रंग
0: जी,
1: और गाने के बोल है तुमने देखी मेरी आंखें।
0: तुम्हें देखी मेरी आंखें
1: जी,
0: इसमें क्या मेरी खता है
1: जी।
0: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर गुलाबी नगरी, इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं बताइए।
1: जी ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या बताइए।
1: देखिए ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है,
0: बिल्कुल,
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: देखिए मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद है या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी मैं सुनाना चाहूंगी, कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर? अलका
1: सहेली, मैं अलका श्रीवास्तव,
0: श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एलपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं।
1: जी हाँ,
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देते हैं, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि रेडियो से जुड़ा तो मेरे जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझदारी हुई हूँ तब से जुड़ी हुई हूँ। मेरे घर में रेडियो चलते ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही है? नाम बताइए अपना।
1: मैडम, मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे?
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगी हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के लिए
1: सुनना
0: आप क्या करती हैं
1: हमें
0: शारदा जी?
1: आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम?
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती। अनोखी जगह में जाएंगे तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करते हैं मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का शेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम, लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युति कनागर बात कर रही हूँ जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युथिका नागर।
0: युथिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही?
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना।
0: हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है।
1: वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे। उस जमाने में हमें बीएड करे हुए लोग थे।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण लिखा है कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है। तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहां तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ।
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर। ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूं कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा। रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाने कैसे गा लेते हो, सीखा है? मैं कहती हूँ क्योंकि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगी।
0: तो अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगी आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है
0: वो बताइए। आपकी पसंद कौन से गीत की है वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: मेहन फिल्म का गाना है आई गा आई गा आई गा आई गा।
0: बहुत खूबसूरत गाया आपने और आपको सुनवा रहे हैं महल फिल्म का गीत आपकी पसंद पर।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, जलंधर
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका
1: हाँ,
0: किस तरह गुजरता है?
1: घर के काम करके थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ, चले
0: ऐसे कौन से
1: जाते
0: काम
1: हैं।
0: हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: मैम, खाना बनाना। हाँ जी
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: मैम।
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम, खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम। मन
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का मैम,
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन, यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन
1: थैंक
0: फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं।
1: मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। हम
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम, सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियां ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियां मिल जाती हैं, तो आपको
1: जी
0: अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है। जी
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के। सूजी
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: के बनाते हैं, सूजी
0: अच्छा,
1: को भूनकर।
0: सूजी के टुकड़े
1: जी
0: बनाती हैं।
1: जी जी मैम। और मैम, आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयां भी बना लेती हैं?
1: जी, आटे की भी बनाती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयां होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो
1: जी मैम,
0: मावे की मिठाइयां मिलती हैं उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है। तो
1: जी मैम, जी
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती
1: मैम,
0: हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती
0: अच्छा, और आपको किस तरह का
1: है।
0: संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा। बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही है।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती।
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की
1: और
0: किताबें पढ़ती हैं?
1: खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती हूँ। वो स्टोरी और कोई कथा वेथा
0: तो जो कहानियां आती हैं वो आपको प्रेरित करती हैं, और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली।
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा।
0: सबसे ज्यादा, और उसके
1: हाँ
0: बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ मैं और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे
0: हाँ,
1: वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले, उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा।
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन
1: इसीलिए
0: है?
1: हम दोनों ही है।
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं। आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ और वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गोभी, शेंगदाना, मुसब्बी वो बेचते हैं।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंद
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी
1: जी
0: बात हो रही है चंचल वर्मा से। तो दो चंचल
1: जी
0: सखियां बात कर रही हैं इस समय।
1: जी
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं।
1: जी
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम, मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हों।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है।
1: जी
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है।
1: जी और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ही जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 4002466 2। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: पांच कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूलकर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची, तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मिस सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

गीत सुधा को पसंद था, क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है, क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था, क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन की फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची, तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आ जाकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ, मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहाँ हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहाँ देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वो अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आते हैं मिस सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक है? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सुधा ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं? जी। कितने घंटे? 3-4। बस? और बीती रात? नहीं सो पाई। क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा, मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी। मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है। कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा, घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा। जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

एक दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन न आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं, रमेश ने मुस्कुराकर कहा। तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूट कर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस ने मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंद गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा? क्यों? सर मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगी आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर? भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी। तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ, रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है, और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार हैं। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहाँ किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा। सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ खास चर्चाएं भी करेंगे और साथ ही साथ आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा गीत। दोस्तों, हम सभी जीवन के हर एक पड़ाव में कहीं न कहीं अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। हमारा प्रयास यही होता है कि बस हम अपनी लगन, अपनी मेहनत से अपने निर्धारित मुकाम को हासिल कर सकें। दोस्तों, सफलता के लिए कर्म के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। उचित समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। जो व्यक्ति तय समय पर अपना काम नहीं करते हैं, उन्हें सफलता मिलना लगभग असंभव होता है। इसीलिए लक्ष्य निर्धारण के साथ व्यक्ति को समय प्रबंधन का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते, समय उनकी कदर नहीं करता। सफल लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं और असफल लोग लगातार ज्यादातर समय अपने दुखों और परेशानियों का ही रोना रोते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करते, समय उनकी भी कदर नहीं करता। ये बात बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य निर्धारण के साथ अपने समय को निर्धारित अगर नहीं करेंगे, तो वाकई वो सफलता मिलना लगभग नामुमकिन होता है। तो समय के साथ अपने काम को लेकर आप जरूर आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, सफल वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तय करने और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब हजारों प्रयोग करने के बाद भी सफल नहीं हुए, तो उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि अब क्या करोगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक कोशिश और करूंगा। समय प्रबंधन का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि इंसान गलतियां नहीं करेगा। गलतियां होना हमसे और आपसे स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कभी कोई भी गलती हो जाने के बाद हमें तुरंत उसमें सुधार करना चाहिए। हमें काम करने के दौरान उसका आकलन भी करते रहना चाहिए कि जैसा हमने सोचा था, क्या काम उसी के अनुरूप हो रहा है। ऐसे आकलन करके हम अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्य निर्धारण के साथ साथ जब हम समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो कुछ बातें बेहद जरूरी होती हैं। जैसे कि दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने दिन की योजना बनानी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक अपने काम की सूची तैयार करें, अपने कार्यों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करें और एक के बाद एक उन्हें पूरा करना शुरू कर दें। अपनी सूची में प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्दिष्ट जरूर करें और सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा किया है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कार्य को आप लगातार पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। अपने कार्य को करने के बीच में कुछ समय अवश्य दें और अधिक से अधिक प्रेरणा के साथ अपना अगला कार्य शुरू करें। दिन भर ऊर्जावान बने रहने के लिए, अपने कार्य को अच्छे तरीके से पूरे करने के लिए संतुलित भोजन करना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, बातें और भी, पर उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम सभी आज भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे आसपास काम करने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क पर चलने वाले हर दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से लगभग अस्वस्थ रहता है और हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसीलिए अधिकांश लोग स्वास्थ्य की चिंता भी करते हैं और नियमित दिनचर्या से चलते भी हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की यह चिंता व सजग

0: चकता मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ही देखा जाता है, लेकिन अगर आप देखें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई उतना ध्यान भी नहीं देता। लेकिन दोस्तों, ये उतना ही जरूरी है जितना आप शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, हम हमेशा खुद बेहतर दिखने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसी पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित होता है, और इसी प्रवृत्ति के कारण हम एक आसपास अपनी दिखावटी दुनिया का निर्माण कर लेते हैं और डबल फेस के साथ जीना भी शुरू कर देते हैं। एक जिसे परिवार और समाज देख रहा है और दूसरा उसका अपने आप से जूझता भीतरी मन। आज जीवन में बदलते संघर्षों के मायनों ने भी मनुष्य के संघर्ष से भरे इस जीवन को बदल दिया है। दोस्तों, अगर आप पहले देखें तो बहुत अधिक न भी सही तो एक उम्र तक बच्चा स्वतंत्र व तनाव मुक्त जीवन जीता था। उस पर सामाजिक, शैक्षिक और पारिवारिक दबाव कम हुआ करता था, या कह सकते हैं कि वह परिवार बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता था। बच्चा विषम परिस्थितियों, असफलता की स्थितियों में परिवार के सहयोग से स्वयं को मानसिक दबाव से मुक्त कर लेता था। वर्तमान में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चे अभी से ही तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, अकेलापन, प्रतियोगिता व असफलता का डर जीवन को मायूसी से भर देता है। ऐसे में आवश्यक है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का उचित समय जरूर निकालें, जिससे कि वह अपने मानसिक युद्ध से, मानसिक द्वंद्व से अपने आप को बचा सके, अपने ऊपर नकारात्मक को हावी होने से बचा सके। नहीं तो आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे में कई सारे ऐसे कदम होते हैं जो परिवार के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए एक बेहद दुखद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम में चर्चा दोस्तों, कार्यक्रम में आगे और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: स्वामी हरसेवानंद शिक्षा संस्थान,
2: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
1: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चुर्क में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
2: एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान, संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
1: स्वामी हरसेवानंद शिक्षा संस्थान।
0: दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड असीमित और अद्भुत है। इसमें असंख्य आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। हमारा सौर मंडल भी इसी विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं हमारा ब्रह्मांड कैसा है, इसके बारे में इस वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं सौम्या सिंह।
3: नमस्कार, मैं सौम्या सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा। आज आपसे हमारे ब्रह्मांड के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। हमारा ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमयी और खूबसूरत भी है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पिंड जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि दिखाई देते हैं। आकाश में मौजूद इन प्राकृतिक पिंडों को आकाशीय पिंड कहा जाता है। ये हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड एक विशाल स्थान है जिसमें मौजूद सब कुछ समाहित है। हम जो खगोलीय पिंड देखते हैं वे ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों का एक छोटा सा अंश है। आधे से अधिक खगोलीय पिंडों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि वे हमसे बहुत दूर हैं। वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन्हें रोजमर्रा की इकाइयों से, मापन इकाइयों से नाप ही नहीं सकते। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई इकाई की खोज की जिससे हम आकाश में मौजूद अलग अलग उल्का पिंड, ग्रह, तारे आदि से अपनी दूरी नाप सकें। इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा करता है। यह इतनी बड़ी दूरी दर्शाता है कि इसके उदाहरण को समझने के लिए हम एक सबसे निकटतम तारे का उदाहरण लेते हैं। हमारे यहाँ से सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह हमारी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका अर्थ यह है कि इस तारे से हम केवल प्रकाश पहुँचने तक में ही 4.2 वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, ये तो हुई अभी की बातें, परंतु सबके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड बना कैसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग नामक एक विस्फोट के बाद हुआ था। इसमें उस समय गर्म गैसों और कणों से बादल बने और यह बादल सूर्य के चारों ओर घूमते थे। समय के साथ कई कण और जुड़ते गए और यह एक बड़ा सा पिंड बन गया। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इन पिंडों को अपने पास छोटी छोटी वस्तुओं ने खींचा। अंत में यह इतना बड़ा होता गया कि इसमें एक विशाल ऊर्जा का धमाका हुआ और इसी धमाके से काफी समय बाद हमारे सूर्य जैसे तारे, ग्रह, उल्का पिंड और अनेक खगोलीय पिंड बने। यह खगोलीय पिंड जब मिले तो इन्होंने आकाश गंगाएं बनाई। ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं और ये आकाश गंगा नामक समूह में होते हैं। तारों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल आकाश गंगा के तारों को जोड़ कर रखता है। तारों के अलावा आकाश में अनेक खगोलीय पिंड जैसे ग्रह और चंद्रमा होते हैं। आपको पता है आकाश गंगा के भी आकार होते हैं। यह आकार तारों के वितरण पर निर्भर होते हैं। इसी से आकाश गंगाओं को स्पाइरल, वलय या अंडाकार जैसे आकार मिलते हैं। वैसे हमारा सूर्य एक स्पाइरल आकाश गंगा का हिस्सा है जिसे मिल्की वे कहा जाता है। मतलब हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। अब यह नाम कैसे पड़ा? वैसे हमारे पृथ्वी से एक सफ़ेद रंग की दूधीय पट्टी दिखती है जहाँ पे अनेक तारे हैं। इसी वजह से इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा। इस गैलेक्सी में अपना सौरमंडल भी आता है। हमारा सौरमंडल सूर्य, ग्रहों, अनेक चंद्रमा और अनेक छोटे पिंडों से बना है। एक सौरमंडल में सभी ग्रह और उल्का पिंड सूरज के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। सूर्य से निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब चट्टानी ग्रह हैं और बाकी के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये गैस दिग्गज ग्रह हैं। अर्थात जो शुरू के 4 ग्रह हैं इसमें सतह ठोस होती है। यहाँ पे आप पांव रख सकते हैं, चल सकते हैं इनकी सतह पे। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी ही ले लीजिए। परंतु जो बाद के 4 ग्रह होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो केवल गैस से बने हुए बड़े बड़े ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में मंगल के बाद और बृहस्पति के पहले उल्का पिंडों की एक पट्टी भी मौजूद है। इसे हम लोग अंग्रेजी में एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं और यह भी सूर्य के चारों ओर घूमता है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशालकाय और रहस्यों से भरा है कि इसे समझने के लिए हमें अलग से संस्थाओं का संगठन करना पड़ा। अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों का अध्ययन करती हैं। जैसे अमेरिका में नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चाइना में सेंसा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रशिया में रफसा रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, उसी प्रकार भारत में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या यूं कहें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसका कार्य भारत के लिए अंतरिक्षी खगोलीय पिंडों पर अनुसंधान से लेकर अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसने ब्रह्मांड को समझने के लिए कई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। इसमें सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा यानी कि सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके बाद तो मानो यह सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। अनेकों उपग्रहों को आकाश गंगा में भेजा गया, हमारे अंतरिक्ष में भेजा गया, अंतरिक्ष की अलग अलग रहस्यों को परतों को खोजने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए। हाल ही में 5 नवंबर 2013 को भारत ने मंगलयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और 24 सितंबर 2021 को इसे मंगल के कक्ष में परिक्रमा करते हुए 7 साल हो गए हैं। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण भी किया गया। भारत को अंतरिक्ष की इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कई अद्वितीय वैज्ञानिकों का हाथ रहा है, जिनमें से कुछ नाम विक्रम साराभाई, नंबी नारायणन, नंदिनी हरिनाथ, मौमिता दत्ता, टेसी थॉमस, रामचंद्र राव, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा, एमजीके मेनन, ये सब तो बस कुछ चुनिंदा नाम हैं। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अभी आपको पता तक नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को अंतरिक्ष में एक विशेष स्थान हासिल करने में भारत के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे विश्व में अंतरिक्ष में यान के प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने वह स्थान हासिल किया है जहां से वह अन्य दूसरे देशों की भी सहायता करता है। इसका पूरा श्रेय हमारे देश के महान वैज्ञानिकों को जाता है, जिनके अधिक प्रयास से यह कार्य संभव हो पाया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करने में इनका सभी जनमानस की तरफ से हृदय से उनको नमन है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता हमारा ब्रह्मांड। वार्ताकार थी सौम्या सिंह। दोस्तों, अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य, अपने रहन सहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ना खान पान का सही समय और ना ही व्यायाम या फिटनेस के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी लापरवाहियों के कारण हमें एक दिन स्वास्थ्य के प्रति बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्यों ना इस नुकसान से बचने के लिए हम अभी से स्वयं के लिए समय निकालें और अपनी दिनचर्या को एक स्वस्थ दिनचर्या के रूप में अपनाएं, ताकि दिन भर नई ऊर्जा और ताजगी के साथ आप अपने काम को करें और अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। दोस्तों, समय की मांग कंप्यूटर ज्ञान। जी वाकई, ये कथन अपने आप में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज का ये जो दौर चल रहा है जहाँ कंप्यूटर हर एक क्षेत्र में इन्वॉल्व है, बिना कंप्यूटर के हम कोई भी काम बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान युग को यदि कंप्यूटर युग कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले कुछ वर्षों में कंप्यूटर प्रत्येक घर में टीवी की तरह दिखाई देगा, क्योंकि किसी का भी काम कंप्यूटर के बिना नहीं चलने वाला। जीवन के हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। व्यवसाय हो, नौकरी हो, उद्योग हो या फिर व्यापार हो, आपको हवाई जहाज से यात्रा करनी हो, चिकित्सा के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, या फिर आपकी शिक्षा से संबंधित कोई बात हो, या फिर आपको किसी सूचना से जुड़ना हो, हर एक जगह कंप्यूटर बेहद जरूरी हो गया है और कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा भी बन चुका है। दोस्तों, आज कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में यह हिसाब किताब रखने के काम करता है और सूचना को हम तक पहुंचाने का भी काम करता है, और कहीं न कहीं दूर संचार की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के अनुसंधान क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कंप्यूटर के माध्यम से हमें कई सारी नई जानकारियां मिली हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के उपयोग ने हम सभी को विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लाभ पहुंचाए हैं। इंटरनेट के माध्यम से जहां हम पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं, घर बैठे बैठे कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने मित्रों, अपने सगे संबंधी जो बहुत दूर रहते हैं हमसे, हम उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, उन्हें संदेश भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। यह कम मूल्य पर उपलब्ध होने वाली ऐसी सेवा है जिसका अब भरपूर उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर के विकास ने सूचना के क्षेत्र में कई नए आयाम दिए हैं, और संचार उपग्रह की बात करें तो ये बिना कंप्यूटर के भी काम नहीं कर सकते। यानी कि बेहद जरूरी है इन तमाम उपकरण को जहां हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वहां कंप्यूटर की भूमिका बेहद आवश्यक है। दोस्तों, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन जैसे सुविधाएं इन्हीं संचार उपग्रहों से ही संभव हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी शॉप पे, किसी भी मॉल में या कहीं भी, तो वहाँ जो बिलिंग सिस्टम जो उपयोग होता है वो भी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत जल्द किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा भी समय बचता है। दोस्तों, आज कंप्यूटर शिक्षा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है कि भारत में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं इस विषय के जानकार लोग कंप्यूटर में प्रशिक्षित हो रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर नॉलेज को बहुत संजीदा से लेते हैं तो इसमें रोजगार के बहुत

सारे क्षेत्र उपलब्ध हैं और न ही सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी भारी डिमांड है। दोस्तों, कंप्यूटर का निर्माण भी मानव मस्तिष्क ने ही किया है, अतः यह व्यवहार में भले ही बुद्धि को पराजित कर दे पर मानव की अपेक्षा कम समय में ज्यादा काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो कंप्यूटर में ही निहित है। कंप्यूटर ने डिजिटल क्षेत्र में क्रांति लाकर इसमें कई सारे परिवर्तन भी किए हैं। आज कोई भी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध है जो कि पुराने समय में कागजों पर उपलब्ध होती थी। इससे पेड़ों को तो बचाया ही गया है, साथ ही साथ कागजों के फटने से जो जानकारी गुम हो जाती थी उसका समाधान भी हमें कहीं न कहीं मिल चुका है। दोस्तों, आज के दौर में बिना कंप्यूटर के ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं, आसान नहीं। तो आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और कंप्यूटर से जुड़ी तमाम सुविधाओं का लाभ उठाइए।

दोस्तों, कार्यक्रम में चलते चलते अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस विचार के साथ, उनका मानना था कि हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है। जी हाँ, यह कथन दर्शाता है कि अटल जी हिंदी को केवल एक भाषा नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे। उनके लिए हिंदी भावनाओं, विचारों और सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक थी। वे हिंदी को भारतीयता की पहचान मानते थे। इसी विचार के साथ अब अपनी रेडियो साथी रानी राशि को कार्यक्रम युववाणी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी FM 102.7 पर। ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन देखा, आज हम घरनी कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम लेके शामिल हो गए हैं और आज के सूत्रधार भी हम ही हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखत हुई है, ताकि आप अपने परिवार का ध्यान बढ़िया से रख सकें। बहन लोगन देखा, ये बरखा के पानी ना बरसला से धरती का एक एक कण भीज गई बाटे। मतलब लेकिन जैसन बरखा होके के चाहिए वैसन नहीं भइल। जैसे सावन का महीना झिरझिर करके ना बरसेला, वैसे बरसते रह गए ना। और देखा मतलब वो सावन का महीना भी आवे वाला बा। और देखिए जोनी धरती का एक एक कण भीज तो गई बा, लेकिन ऐसे जोन जेठ के तपत घाम से धरती के कण कण जरत रह ना, बरखा के पानी से भिजला के बाद बिल्कुल एकदम मदमस्त हो गल बा। देखे सावन के महीना के जो उनके बात कहती, तो अगला शुक्ल देखा सावन भी लाग जाई और बरखा का रिमझिम फुहार सबके दीवाना बनाई और बनौते बाटे हरियाली से और आनंदित करी। बाकी बहन लोगन देखा, उपदार्थ या काम जेकरा के कैला से समाज और परिवार में तनाव होके, कला होके, झगड़ा होके, ऐसन खाली देखा अगर नाश होला तो ऐसन काम ना करे के चाहिए। नशा करके देखा, हमारे इशारा ये बा कि नशा ऐसन पदार्थ, ऐसन तरल पदार्थ होला कि लोग एक एक करके अपने होश में ना रहले, और जब होश में ना रहला तो घर परिवार में चाहे समाज में गाली गलौज भी सुने के कभी कभी पड़ जाला, मार पिटाई भी हो जाला, कला कलेश हो जाला, माने बहुत सारी समस्या के झेले के पड़ेला बहन लोगन। नशा एक आदमी देखा करेला, लेकिन परेशान जवन है ना पूरा परिवार समाज के झेले के पड़ेला। और बहन लोग देखा, नशा का लत या आदत एगो ऐसन धीमा जहर है ना, जवन ना खाली व्यक्ति का शरीर बर्बाद करेला बल्कि परिवार के आर्थिक तंगी से भी गुजरे के पड़ जाला, मानसिक तनाव होखे लागेला, बचपन का भविष्य अंधकार में होखे लागेला, आपसी विश्वास शरीर में रोग व्याधि उत्पन्न होखे लागेला। हम तो यह सलाह का दे बस कहल चाहब कि नशा नाश का जड़ होला। देखा ये जब तक खुद के अंदर से अपन दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ना हुई है, चाहे देखा महिला हो या पुरुष हो। देखा आजकल तो धड़ल्ले से महिला लोगन भी नशा के तरफ ज्यादा मतलब ध्यान देली ना देली कि मतलब हम घरनी हैं और जब जैसे गर्भवती हुई हैं तो एकर असर दुष्प्रभाव जन बाकी उनके होखे वाला पुत्र या पुत्री पे पड़ेला, माने स्वास्थ्य तो अपन बिगड़बे करेला, साथे अगर गर्भ धारण करी हैं तो देखा उनके होखे वाला शिशु ऊपर पड़ सकेला। तो माने हमके केहू एक आदमी बता दे चाहे घरेतिन बता दे कि नशा कैला से ये फायदा बा। हाँ लोग यही कहेला ना कि नशा ना तो कुल दुख दूर हो जाला। बहन लोगन देखा ये एगो भरम है। नशा कैला से आदमी जब बेहोश हो जाला ना तो कुछ पल के खातिर उनके लागे ला कि कुछ है ये नहीं, लेकिन जब होश में आवेला ना तो औरी ओकर दुगना जन बाकी दुख होखे लागेला। काहे कि कहीं पता चल कि बेहोशी के हालत में नाली में पड़ल हुआ तो कहीं के उसे झगड़ा लड़ाई भल, जब होश भल तो सब कुछ होश है। तो नशा कभी न कबो फायदा भइल बा न कबो फायदा होई, नशा नाश का जड़ है। तो एके बिल्कुल अपने से दूर करें भाई। देखा जे बिल्कुल लंबा समय से नशा कर रहा बात हो गए एकाएक तो छूटी नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे कह लेना कि जे दृढ़ संकल्पित हुई अपने मन से, क्योंकि कहला से केहू ना छोड़ी, लेकिन दृढ़ संकल्पित हुई इस सोच के कि हमार परिवार बा, हमार बचवा बा, हम समाज में रहेला, हमारी इज्जत सम्मान खोएला, ऐसे तो ये अगर मन में संकल्पित हुई कि ऐसा ना हो तो छोड़े के बिल्कुल जान जी कि हम छोड़ सकीला ये सब अगर मान ली है। तो बहन लोगन देखा, परिवार खातिर बचपन के खातिर नशा से दूरी बनाए और जागरूक बने, सकारात्मक सोच अपनावे, परिवार में अपने बचपन के साथ समय दे ताकि सब खुशहाल रह सके। बहन लोगन देखा, बातचीत तो हम लोगन आगे भी करल जाए, लेकिन आज के बैठकी में भी हम जानकारी के साथ साथ मनफेर भी लेके आये है। तो आज देखे शुक्रवार के दिन है, तब भोजपुरी फिल्म के हम लोगन गीत गौ नहीं सुनी ला जा, तो चले एक ठे भोजपुरी फिल्म जोन बाकी गंगा जमुना के गीत बा के सुनल जाए। आवाज है उदित नारायण और श्रेया घोषाल बहन के।

0: बिल्कुल सजनवा लुक छिप के निहारा ना हमरा बदनवा, बिल्कुल देखा बरसात में स्वस्थ रहल जाई तो भाई शरीर भी स्वस्थ रही और कोनो रोग व्याधि ना लगे। देखा मन फिर सुन के तमन फरहर हो गए और देखे भोजपुरी फिल्म के नाव रहला गंगा जमुना, आवाज रहला उदित नारायण श्रेया घोषाल जी के, आनंद आ गेल मन फिर सुन के। तो देखे जब आनंद रहल जाला ना तो कह जाला कि कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाला मन ही, तो ओमे भी ऐसा ऐसा काम करे लागेला, नशा के सेवन करे लागेला। तो जोश में होश नहीं अपन खोए के बा, अपन होश बना के रखे के बा, और खास तौर से अपने बरसात के मौसम में कहे कि देखा बरसात में तरह तरह के जहाँ एक तरह से खुशी बा, पानी से अपन खेत गांव जोन बाकी हरर भरर दिखाताटे, जंगल अपन पेड़ हरियाली से भरल बा, वही देखा अपन जो जीव जंतु हुआ, देखा प्रकृति में तो कई तरह के जीव जंतु भी हुआ जो कि जहरीला भी हुआ और बिना जहर के भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने अपन हद से उनकर जान चल जाला। अब देखा है सब पानी में बरखा पानी में सांप भी बिच्छू भी निकले लें और धान की रोपनी भी हो रहा बा जहाँ जहाँ पानी के जुगत जुगाड़ बा, तो थोड़ा सा सावधानी रखल बहुत जरूरी बा। और सर्प दन से बचाव के खातिर जोन भी हम लोगन के अपन एहतियात पाव के बरते के चाहिए, लेकिन जोन आवश्यक दिशा निर्देश अपने सरकार की तरफ से रहला ओ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखल जाए, तो कभी ऐसा घटना दुर्घटना होकला पर ओकर हम लोग फायदा ले सकेला और सही समय पर इलाज हो सकेला, तो भाई जान भी बच जाए। तो ये बारे में कि सर्पदंश से बचावे के जो आवश्यक दिशा निर्देश बा, पवन कुमार शुक्ल जिला आपदा विशेषज्ञ हुआ उनसे सुरसरी द्विवेदी जी के बातचीत बा, देखे चलो ध्यान से सुनल जाए।
1: साथियों, जहाँ बारिश का मौसम आते ही अपनी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, पृथ्वीवासी गर्मी से निजात पाकर सावन की मस्त हरियाली में कई प्रकार से आनंद उठाते हैं, वहीं कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो बेघर हो जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जो भूमि के अंदर बिलों में रहते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े या सांप, और जब यह सर्प अपने घरों में पानी भरने से बेघर हो जाते हैं तो पनाह के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। इत्तफाकन जब कभी ये इंसानों के या जानवरों के पांव के नीचे आ जाते हैं या किसी भी दशा में ये जख्मी हो जाएं, तो ये खुद के बचाव में प्रहार करते हैं।
2: सही है।
1: और इनका यह प्रहार जो एक छोटा सा दंश होता है, डंक मारना होता है, वह किसी की जीवन लीला समाप्त कर देता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो इन दिनों जिला अस्पताल में सर्पदंश से हो रही मौतों पे लगातार इजाफा हो रहा है और दुर्भाग्य से इनके शिकार हमारे किसान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा की श्रेणी में रखा है। आइए जानते हैं जिला आपदा प्रबंध कार्यालय से जिला आपदा विशेषज्ञ पवन शुक्ला जी से सर्पदंश राज्य आपदा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। पवन जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि बरसात के समय में जब सांपों के घरों में जब पानी भर जाता है, उस परिस्थिति में सांप कहीं न कहीं बाहर निकलते हैं और अपने भोजन के प्रयास में घरों आदि में घुस जाते हैं, और उन परिस्थिति में जैसा कि आपने बताया भी ये बात, ये बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से मैं भी, कि वो जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं तब तक वो किसी को डंस नहीं करते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जब तक आप उसे परेशान नहीं करो, क्योंकि सांप तभी काटता है जब वो अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में, या तो वो फिर उस परिस्थिति में ही आपको काटने का प्रयास करता है।
1: असल में होता क्या है, मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी
2: है
1: और वह उसको देख के इतना भयभीत हो जाता है कि वो उसे
2: लगता है कि कहीं हमें काट न ले, इस डर से व्यक्ति उसे छेड़ता है और वो अपने बचाव में सांप क्या करता है कि कहीं ना कहीं वो दंश कर लेता है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल। लेकिन इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि घटनाएं तो घटित होती रहती हैं, और निश्चित है कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि सर्पदंश की घटनाएं विगत वर्षों में देखा जाए तो प्रायः बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन इसके लिए जो हमारा प्रयास है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा के अनुरूप जो निरंतर जिला अधिकारी स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो विभिन्न उपायों को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनको विशेष रूप से यह निर्देशित किया गया है कि इन बाढ़ के क्षेत्रों में जब ये समय हमारा आता है, अगर हम कहें कि 15 जून से लगाए 15 सितंबर, प्रायः घटनाएं उसके बाद भी होती हैं, उसके पहले भी होती हैं, लेकिन विशेषकर इस बरसात के समय में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, जो हमारे CSC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन जगहों पे इन सर्पदंश का जो एंटीवेनम इंजेक्शन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए मैं प्रायः ये बताना चाहूंगा आम जनमानस को और आपसे अपील करूंगा कि जब भी इस तरह की घटनाएं आपके बीच किसान भाइयों में, भाई बहनों में, बच्चों में या किसी भी परिस्थिति जीव जंतु जानवर में अगर ये घटित होती है तो आप तत्काल आप अस्पताल को जाएं।
1: बिल्कुल,
2: आप कभी उन चीजों में ना पड़ें कि आपको ये सोखा झाड़ देगा, जो आप आम भाषा में कहते हैं कि वो झाड़ देगा, फूंक देगा, उससे विष हट जाएगा, ऐसा नहीं है। बताना चाहूंगा कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे भारत में सिर्फ, हम भारत की बात कर रहे हैं, हमारे भारत में सिर्फ 15% ऐसे सांप हैं जो विषैले हैं। और हम अन्य राष्ट्रों की बात करें, देशों की बात करें, अमेरिका हुआ या बड़े देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया हुआ, वहां पर 85% विषैले सांप हैं। लेकिन जो हमारे मरने की घटना है वो अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत में अगर हम प्रत्येक वर्ष की बात करें तो लगभग 40 से 45 हजार घटनाएं होती हैं
1: जी
2: सर्पदंश से।
1: सर्पदंश से होने वाली जो मृत्यु है, हाँ, उसके बारे में यह भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं
2: जी,
1: कि जितनी मौतें हैं वो विषैले सांप के काटने से नहीं,
2: नहीं
1: बल्कि हार्ट अटैक से होती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि वो काटने के बाद आदमी घबरा जाता है
1: जी।
2: जैसे होता क्या है कि सांप, जब भी कोई जहरीला सांप काटता है उसके कुछ लक्षण है, आपको मिचली आना, नसें जो आपकी कोशिकाएं हैं वो बंद होना धीरे धीरे, घबराहट होना, मुंह से झाग आना, नींद आना, इन परिस्थितियों में व्यक्ति घबरा जाता है। और जाहिर सी बात है कि सांप काटने से कम, घबराने से ज्यादा हार्ट अटैक या व्यक्ति समय से उपलब्ध अस्पताल में ना पहुंच पाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस आकाशवाणी के माध्यम से कि जो भी हमारी बातों को सुन रहा है आम जनमानस, प्रायः आप करें कि जब भी इस तरह की घटनाएं आपके बीच घटित हों आप तत्काल अस्पताल जाएं, क्योंकि हमारे इन क्षेत्रों में, हम अपने सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में अगर हमारा एक तिहाई क्षेत्र जंगल से आच्छादित है,
1: बिल्कुल,
2: प्रायः उसमें कुछ ऐसे सांप हैं जो बहुत ही जहरीले हैं, जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में, कॉमन भाषा में आप कह सकते हैं कि कोबरा, कोबरा को बहुत लोग गेहुअन भी कहते हैं, नाग भी कहते हैं, ये आम भाषा में हम उसका उपयोग करते हैं, ये सांप ज्यादातर जहरीले हैं। साथ ही साथ हमारे जो जंगल पाए जाने वाले हैं, जो सबसे विषैले सांप हैं, उनमें से एक है कॉमन करैत। कॉमन करैत की ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल ठंडे तरीके से है, वो इतना ठंडा है कि आपके बिस्तर तक घुस जाएगा, आप जान नहीं पाओगी,
1: इसीलिए उसे चोर भी कहते हैं।
2: बिल्कुल,
1: और वो ना, हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वो दीवालों पे भी चढ़ता है,
2: वो दीवालों पे चढ़ सकता है, आपके बिस्तर पे घुस सकता है, आपके घरों में आसानी से जा सकता है, और आप उसकी आवाज तक आपको पता नहीं चलेगी और आपके बिस्तर में घुस जाएगा, और जहां भी आप करवट लिए या इधर उधर छेड़छाड़ हुआ वो तुरंत आपको विष दर्ज कर लिया। और उस परिस्थिति में होता क्या है कि आपको मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ही मिलता है, इतना जहरीला है, इतना जहरीला है वो कि आधे घंटे आपको मिल पाएंगे। उन परिस्थिति में यदि आप सामान्य तौर पर अगर आप नजदीकी अस्पताल में पहुंच गए तो आपका जीवन बच सकता है, अन्यथा में वो इतने जहरीले हैं कि बचा पाना मुश्किल है।
1: तो आपके बातों का बिल्कुल पालन होना चाहिए कि जैसे ही हम इस बात,
2: हाँ,
1: से मतलब जानकारी लेते हैं कि किसी सर्प ने काटा है
2: जी,
1: बिना एक क्षण गवाए
2: बिल्कुल
1: हमें अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर
2: मैं अभी भी यही कहूंगा और हमेशा कहूंगा कि जब भी सर्पदंश की घटनाएं आपके बीच किसी भी व्यक्ति के साथ घटित हो, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके घर में परिवार के साथ, या अन्य किसी दोस्त हित मित्र किसी के साथ घटित हो, आप तत्काल अस्पताल जाएं। अस्पताल के अतिरिक्त कोई और अन्य उपाय नहीं है, आप झाड़ फूंक आदि जो भी हमारी अतिरिक्त चीजें हैं आप उनमें ना पड़ें, क्योंकि वो उन्हीं सांपों के काटने के लोगों को बचा पाते हैं जिसमें विष नहीं होता
1: जी।
2: और ये भ्रांतियां हमारे मन में आ जाती हैं कि भाई उन्होंने हमें बचा लिया, हमने झाड़ दिया, फूंक दिया तो बच गए, ऐसा नहीं है।
1: यहाँ तक कि सर्पदंश के बाद, झाड़ फूंक के बाद,
2: हाँ,
1: यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आम जनमानस उनका दाह संस्कार, हाँ, दफन नहीं करता है,
2: ये भी
1: उन्हें पानी में बहा देता है।
2: ये आप कतई ना करें, क्योंकि आपको पता है कि शास्त्र भी हमारा कहता है, हमारा गीता भी कहता है कि जो व्यक्ति जीवित है अगर वो व्यक्ति है मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति तभी प्राप्त होगी जब उसका दाह संस्कार होगा
1: जी।
2: और कहीं न कहीं अगर आप इन परिस्थितियों में सांप के सर्प दंश के परिस्थितियों में अगर आप उसे पानी में केले के पत्ते पर नदियों में बहाव करते हैं तो वो अन्यथा किसी अन्य जगहों पे जा करके कोई जंतु उसे पकड़ सकता है, कोई जानवर पकड़ सकता है, या उसके जो विषैले पूरे शरीर में जो विष फैला
1: हुआ
2: है उससे पानी भी जहरीला हो सकता है, या बच्चा जो नहा रहा है उसके इर्द गिर्द तमाम सारी चीजें उससे और भी बीमारियां और भी तरह के नुकसान हो सकते हैं
1: जी।
2: तो आप कतई काम को ना करें। आप अगर वो व्यक्ति मर जाता है

0: संस्कार से पूर्व
1: हाँ,
0: पोस्टमार्टम
1: हाँ,
0: आवश्यक है
1: बिल्कुल मैडम,
0: ताकि उसके मृत्यु की पुष्टि हो सके
1: बिल्कुल,
0: कि
1: बिल्कुल,
0: अमुक व्यक्ति सर्पदंश द्वारा ही
1: हाँ,
0: मरा है।
1: ये अनिवार्य रूप से जैसा कि आपने अभी बताया, मैं आप सभी आम जनमानस से बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी सर्पदंश की घटना घटित हो, उन परिस्थितियों में आप सबसे पहले अगर वो व्यक्ति या बच्चा या जो भी है जिसके साथ ये घटना घटी तो उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य कराएं, क्योंकि वो एक ऐसा साक्ष्य है जिस साक्ष्य के आधार पर हमारे संबंधित क्षेत्र के जो भी हमारे राजस्व के हमारे लेखपाल हैं आपके क्षेत्र के या अन्य ऊपर के अधिकारी हैं उनके माध्यम से यह कार्रवाई हमारे तक पूर्ण हो पाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित आपदाओं की श्रेणी में जो 4 लाख रुपए की धनराशि हम किसी भी व्यक्ति के मरने पर देते हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर उनके निर्देशानुसार स्वीकृति के आदेश पर हम जो उन्हें 4 लाख रुपए देते हैं उस पैसे को हम उसी साक्ष्यों के आधार पर ही दे पाएंगे। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप उसका पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से कराएं। अगर इन केस किसी परिस्थिति में पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है तो पंचनामा भी जरूरी है, लेकिन प्रयास करें कि पोस्टमार्टम अनिवार्य हो
0: जी।
1: और तुरंत उसकी सूचना आप अपने संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को दें, लेखपाल को अगर नहीं दे पाते हैं तो आप संबंधित तहसीलदार को दें, उपजिलाधिकारी महोदय को दें। अगर उन परिस्थितियों में भी अगर कहीं ऐसी बात फंस जाती है तो आप सीधे हमारे जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय को भी आप दूरभाष के माध्यम से बता सकते हैं। जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है वो है 0544-42-97-645। आप उस पे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, उस पे आप अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ 1077 एक टोल फ्री आपदा प्रबंधन का नंबर भी है, उस पर भी आप अपनी सूचना को दर्ज करा सकते हैं।
0: पवन जी, चलते चलते हमारे जनपद वासियों के लिए कुछ संदेश।
1: जी, मैं अंतिम में अपनी बात को रखते हुए सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आप सभी आम जनमानस से अपील करता हूं कि आप इन सर्पदंश की घटनाओं में जो भी जागरूकता का कार्य आप पेपर, न्यूज़पेपर या जो दैनिक समाचार पत्र हैं, हमारा रेडियो, आकाशवाणी के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी आपको दी जाती है आप उसको निरंतर सुनते रहें, उससे बचने के जो उपाय हैं उनको आप करते रहें। उसी के आधार पर ही हम अपने जीवन, अपने लोगों का जीवन बचा सकते हैं। ये हमारा एक अपील होगा जिलाधिकारी महोदय की तरफ से, साथ ही हमारे तरफ से। और मैं इसके लिए विशेष रूप से आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी को, आम जनमानस को भी ये धन्यवाद देता हूं कि हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, इसको मैं आपको एक अंतिम में एक बात रखता हूं, करें प्रशिक्षित, रहे सुरक्षित, ये हमारा वर्ड है। धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो बहन लोगन देखा इतना बढ़िया संदेश सुनल गल, उसे पहले सर्पदन से बचाव के खातिर आवश्यक दिशा निर्देश जन रहा वो सुनल गल। तो अब तो कहते कि चला चलाओ तेगो मन फेर हो जाओ, धन्यवाद स्वरूप।

बिल्कुल टूटे ना प्रीतिया की डोर और यही मंशा के साथ कि अच्छा अच्छा गीत गौनाई सुनल जाए और अच्छा अच्छा खाना खाइल जाए ताकि हम लोगन के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बनल रहे बढ़त रहे। तो बहन लोगन अगले बैठकी तक आप लोगन के ये हम लोगन के संदेश बा एक दूसरे के खातिर के कि स्वस्थ रहल जाए अपने बचपन के बरसात में बाहर खेले से थोड़ा सा बचावल जाए काहे कि बाहर के माटी हिले में कर के रहना बड़ा छोट छोट रहला और चर्म रोग जैसन बीमारी जैसे दांत खाज खुजली भी हो जाला बचपन के चाहे खुद भी भीजल कपड़ा बिल्कुल ना पहने और साफ पानी के सेवन करे पानी के उबाल के सेवन करे और चलल जाए आज के बैठकी समेटल जाए। तो सब बहन लोगन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घरनी एफएम 102.7 पर। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनावे बदे भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन भव्य रसायन स्कीम के आज मंजूरी दिहले हवे। योजना 3030 करोड़ रुपया के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 ले लागू कैल जायी। ई जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव देने।
1: भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रेटजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण। एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत इम्पोर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि पेपर लीक के घटना के बाद पछिला 2.5 महीना में कई गो कदम उठावल गई हो। दोषियन के गिरफ्तार करके जेल भेजल गई बा। काली रात एगो वीडियो संदेशा में श्री मोदी कहना कि सरकार का मुख्य जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहल कि विद्यार्थियन को शैक्षणिक बरिस बेकार न जाए।
2: हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थी

0: विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए।
1: ए बच्चे, संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवा दिन नीट पेपर लीक के मुद्दा पर हंगामा जारी रहल। कई बेर के स्थगन के बाद लोकसभा राज्यसभा का कार्यवाही सोमवार तक खातिर स्थगित कर दिया गया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र आ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के नीट यूजी पेपर लीक मामला के बाद सुधारण के लागू कैले में भइल प्रगति पर एगो पुरहर हलफनामा दाखिल कैले का निर्देश दिले हवे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक काली रात गुरुग्राम के एगो निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियन जेपी नड्डा आज जितेंद्र सिंह के मौजूदगी में 26 दिन से चल रहल अनशन खत्म कर देने।
2: इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री वांगचुक से सोशल मीडिया के जरिए अपील कैले हमें कि वो डॉक्टर लोगन के सलाह के मुताबिक अपने दिनचर्या का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपन सामान्य वजन के वापस पावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार के भी नहीं 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगन से अपन विचार साझा करी है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम को 136वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सगरो नेटवर्क पर कइल जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरा के तीसरका दिन ने आज जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर पहुंचल करीब 150 फरियादियन से मुलाकात कैले।
3: गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना तथा उनके प्रार्थना पत्र लिए। उन्होंने पास में खड़े अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अस्पतालों के एस्टिमेट की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे गोरखपुर।
1: मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगहों पर वहीं बिहने कहीं कहीं बरखा और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का पूर्वानुमान जतौले हो। विभाग यह दौरान कहीं कहीं बिजली और गिरले का येलो अलर्ट जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के
1: के राम
0: राम
1: राम।
0: राम। भूला भैया राम राम हो।
1: राम राम गुलाओ बहन।
0: आप राम राम। और बता मैं का हाल चाल बा। बड़ा दिन के बाद देखा भेंट मुलाकात आपसे पंचायती में होत बा।
1: बिल्कुल
0: और बता
1: बिल्कुल।
0: मैं तो हर देखत हई कि स्वास्थ्य तनी सा गिरल गिरल लगत है।
1: इस समय मौसम के मार हा, और इसने में जौन बा कि इस समय बात भी हो ना गुलाओ बहन। सबसे महत्वपूर्ण कि जौन पहले हम लोग के चुआड़ी के पानी मिल जाए,
0: हाँ
1: और प्रकृति से जौन बा कि लगल अगर पेड़ पालो के जड़ के से रिसाव हो करके, वो जौन बा के पानी की जौन पौष्टिकता रहे ना, वो आज मिल नहीं पावत हो।
0: बिल्कुल।
1: आज आदमी जौन बा कि सेवन कर रहा आरओ के पानी, और इधर उधर से छान करके निथार करके,
0: बिल्कुल। जौन भी पानी के अंदर
1: तो
0: पौष्टिक तत्व तो रहला
1: बिल्कुल
0: वो तो
1: बिल्कुल
0: नष्ट हो जाला आरओ पानी में। देखा अगर न हम लोगन आरओ का पानी पियल काहे शुरू करनी, जब हम लोगन के धरती माई में यानी कि जो सतह नीचे बा
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्रदूषित
1: बिल्कुल
0: भइल
1: प्रदूषित
0: और वो
1: भइल।
0: पानी भी प्रदूषित भइल, वो कहीं न कहीं वो प्रदूषित पानी हम लोगन के शरीर में जाए लगल नल के द्वारा कुआं के द्वारा। तो देखा अब डॉक्टर का कहना बा कि अगर हम लोगन शुद्ध जल का सेवन न करल जाए न पियल
1: बिल्कुल
0: जाए
1: बिल्कुल
0: तो कई तरीका के बीमारी हम लोगन के ऊपर धावा बोल सकला। तो अब हम लोगन आरओ का सहारा लेवल गल कि
1: बिल्कुल
0: आरओ का
1: बिल्कुल
0: पानी पियल जाए तो शुद्ध रहे, लेकिन एक कहीं न कहीं एकर भी एक भ्रांति ही बा। और अगर
1: हाँ
0: आरओ का पानी एक तरफ से कहल जाए कि जौन पे पानी के गुणवत्ता होला, पानी के जौन भी पोषक तत्व तो होला, वो देखा कहीं न कहीं वो नष्ट हो जाला।
1: बिल्कुल। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होला आदमी के, ओके बढ़ावे खातिर जौन बिल्कुल प्रकृति द्वारा प्रदत्त जल हो ना,
0: बिल्कुल।
1: ओमे थोड़ा सा ताकत बनला। लेकिन जैसे आर ओगरा के पानी पीला के बाद फिर कहीं आदमी जात बात साधारण पानी मिल गए, तो
0: बिल्कुल।
1: एहमे जौन बाग जौन टकराव होता है इस समय बरसात के मौसम में, उस समय ओमे के वजह से जौन बाग तबीयत निश्चित रूप से
0: बिल्कुल
1: खराब हो
0: बिल्कुल। एकर
1: रहा
0: देखा एक बहुत बढ़िया उपाय बा कि अगर पानी
1: है।
0: का सेवन आप शुद्ध रूप से करल चाहत हो तो आप सबसे बढ़िया पानी के उबाल के ओके छान के
1: बिल्कुल
0: पिए।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: समझ ले कि जौन भी एकर गंदगी होला पानी में जो नुकसान करे वाला तत्व तो होला वो देखा बैठ जाला नीचे। और जब सूती कपड़ा में आप छान लिए तो वो पानी एकदम हो जाए आपका शुद्ध और
1: बिल्कुल
0: ओके
1: बिल्कुल।
0: पिए से देखा कहीं भी नुकसान नहीं करेला, वो स्वास्थ्य के खातिर भी बढ़िया होला।
1: और जौन हम लोग अभी चुवाड़ी की बात कर रहे थे, आज के जो लड़का बच्चा हन उनके तो चुवाड़ी के बारे में जानकारी हो नहीं है। और इस तरीके प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितना भी जल स्रोत रहल, एके आज जौन बाकी प्राकृतिक संपदा के बारे में आवे वाला पीढ़ी
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे करके लुप्त तो हो जा रहा है, जान भी न पाई है। अब यही की जनावे खातिर जौन बाकी हम लोग एक से बढ़कर एक जौन बाकी युक्ति अपनावे का प्रयास आदमी करत बा कि कहीं जौन बाकी जैसे पेड़ पालो लग जाए, तो पहाड़ी से जहाँ झरना कुछ चले ओके बारे में थोड़ा जानकारी होए लोगन के,
0: बिल्कुल।
1: बांध बन जाता तो ओके बारे में जौन बाकी जे कैसे ओकर रिसाव होला, ताकि ये सब जौन बाकी जो पहले के परंपरागत सब चल रहा रहे आज भी वो रहे, ओके जौन बाकी आवे वाला पीढ़ी जाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा बोला भैया हम तो कहब कि अपने जो पीढ़ी के बात कहला है तो देखा भविष्य में अपन देखा जीव जंतु जो अभी देखा साफ सफाई के जैसे बात करत रहनी अपने स्वास्थ्य के बात, तो देखा इस समय जो मौसम चलत बा उमे साफ सफाई के विशेष ध्यान देवे के चाहिए। और साथ में देखा ये बात है ना कि कहे कि जीव जंतु देखा इस समय हद अपने बिल से बाहर निकल रहा हवा। अगर अगर साफ सफाई आप ना करिए तो देखा वो कहीं न कहीं आप वो जीव जंतु कहीं बिस्तरा में बिछौना में कहीं घर के अंदर कोनो कोना कतड़ा में कोनो चीज के सामान के पीछे छुप के बैठल
1: बिल्कुल
0: रही है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: जहां भी आप काम करे जाइए तो हो सकल आप ध्यान ना दें और वो आपके कहीं नुकसान पहुंचा दे। तो
1: ये समय
0: ऐसा ना
1: समाचार के माध्यम से प्रतिदिन पता चल रहा है कि
0: बिल्कुल।
1: सर्प वहाँ काट देलक, तो जोन बाकी अकस्मात जान नहीं पेलक, मृत्यु हो गई, छोटे छोटे हो गए जोन बाकी सर्प
0: भैया
1: के
0: देखा
1: बच्चा।
0: एक बात बताएं, लेकिन वो लोगों भी केहू के ऐसे नुकसान नहीं पहुंचावलन, उनके लगे ला कि हमन के वो लोग हानि पहुंचावत हुआ
1: बिल्कुल।
0: ए बदे वो उनके क्षति
1: भाई
0: पहुंचावलन।
1: जहाँ प्रत्यक्ष दर्शी नहीं रही तो छुप के उड़ रही है, वही में पता चल कि पैर पड़ गए
0: बिल्कुल
1: या
0: भैया। और
1: हाथे लग गए या जो
0: एकदम
1: भी हो के आभास होलक कि हमें क्षति पहुंचा था, तो वो जनबा कि अपन प्रहार कर देला।
0: बिल्कुल। तो देखा है सबसे पहले देखा हम लोगों के सावधानी रखे के जरूरत होला
1: बिल्कुल
0: और अपने भविष्य के पीढ़ियन के खातिर देखा जैसे कि प्राकृतिक संपदा संरक्षण करल बहुते जरूरी हो गई बा। और देखा एक ठे नारा भी बनल बा जे आज बचाई उहे काल पन पाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: देखा पंच भैया लोगन धरती माई हमहन के 5 दिन देखा 5 चीज हो फ्री में देले हैं। जैसे देखा ये बैंक बैलेंस नहीं है, ये जीवन का बैलेंस बा। और और देखा अब पांच चीज में देखा का कहा है, जल हवा मिट्टी जंगल और जैव विविधता।
1: क्या बात है, क्या
0: और
1: बात।
0: देखा ये पंच भैया लोगन हम लोगन के जीवन का समस्या काहे आयल ओकर भी कारण बा लालच, काहे कि हम लोग उनके अंदर भी लालच समा गई
1: बिल्कुल,
0: कहीं न कहीं कि अगर पेड़ लगल बा तो ओके देखा काट के बेच दहरिये पेड़ वो 4,000-10,000 का मुनाफा मिल जाये। साथ में देखा पेड़ के हम लोग जैसे काटा था ओके बिल्कुल भी नहीं काटे के चाहिए और देखा जुगाड़ में लगल रहे के चाहिए कि मुनाफा हो तो पेड़ लग हम लोग जो जितना भी छोट पेड़ बा पौधा बा ओके
1: बिल्कुल
0: ई मौसम में जरूर लगाए। और कहे कि यही लगावे से हम लोग के जो बचवा लोगन हुआ उनका भविष्य सुरक्षित रहे। और देखा साथ में पानी के बर्बादी भी नहीं करे के चाहिए, जैसे बूंद बूंद पानी नल से अगर टपकत बा तो समझ ला ये तरीका से एक साल में भैया 9,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाये। अब समझ ला कि ऐसने में हम लोगन पानी का संचयन बहुत ही जरूरी हो जाला करे के चाहिए। कहे कि देखा एक एक चीज अगर हम लोगन बचाई ना तब जाके धरती माई कहीं ना कहीं खुशहाल रही है और धरती माई पे रहे वाला जीव जंतु हो चाहे प्राणी हो ये खुशहाल रही है।
1: बिल्कुल, आज जो लड़का बच्चा लोग चाहे हम लोग भी जो फल खा थिया अमरुद फल जाता हो आम जो बाकी समय कितना खेल गए
0: बिल्कुल
1: ये जो पेड़ पालो हो फलदार वृक्ष ये हम लोग के बाबा दादा लोग लगोले रहन तब जाकर
0: तब जाके आज आप फलदार वृक्ष का लाभ उठावत हो।
1: ये आवे वाला पीढ़ी के हम का देवत है, हम एक पेड़ लगावत है कि नहीं सबके एक उम्र है
0: बिल्कुल
1: एक निर्धारित समय तक जीवित रही है तो जो पेड़ पालो उस समय के लगावल हो जन बाकी 50 साल 60 साल 100 साल पहले वो अब आकर के जन बाकी धीरे धीरे जिड़ सीड़ हुई सड़ी टूटी
0: बिल्कुल
1: नया जब पौधरोपण हुई तब जाकर कहीं आगे आवे वाला पीढ़ी के खातिर हम लोग दे पा रहे
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोग के अगर अपने आवे वाला पीढ़ी के खातिर हम लोग प्रेम करत ही रोज प्रतिदिन तो आदमी जमीन बनात बा घर बनात बा कि हमारे जन बाकी 2 लड़का हो 4 लड़का हो
0: बिल्कुल
1: ओके खातिर हम का बना के जाती लेकिन ओके खाए के व्यवस्था का करत
0: ही बिल्कुल
1: अपन जन बाकी ओके फलदार वृक्ष देवत है कि नहीं
0: देवत
1: हवा खातिर पेड़ देवत है कि नहीं
0: बिल्कुल। बाजारे में भैया चल जा तो देखा फल भी मिलला फूल भी मिलला अपन कुल चीज मिलला सागो मिलला सब्जी मिलला लेकिन जवन फल का स्वाद अपने उपजायल पेड़ से मिलला भैया वो बाजारे के फल से नहीं मिलत। अगर आप प्रयास देखिए कि साग सब्जी जो ना बाजारे से लिया के खाते हैं और जो ना अपने बगीचा के साग सब्जी बा ओकरे स्वाद में कितना अंतर होखला तो हम लोगन के जागरूक होवे के सचेते के जरूरत बा। और देखा अगर हम लोगन के जैसे अपन जैसे प्राकृतिक आपदा को जो बात करते हैं कहीं ना कहीं देखा हम लोगन जो प्रयोग करते हैं प्लास्टिक भैया ये भी देखा कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक बा हम लोगन के स्वास्थ्य के खातिर भी अपने पर्यावरण के खातिर भी।
1: बिल्कुल जो आप कहलन की जो बाकी अपन पेड़ के खाइल और सीधी सी बात यह समझ जा कि आपन लड़का कितनो गलती करे चाहे कितनो खराब रहे चाहे बढ़िया रहे
0: बिल्कुल
1: ओके आदमी कितना दुलारा ला और दूसरा कितनो बढ़िया रहे लेकिन ओकरा थोड़ा दूसरे के जैसा दे
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अपन अगर खेत के पेड़ हो ओकर जन बाकी फल अगर आदमी खाए तो कैसो रही तो श्रद्धा से प्रेम से जवन ओकर सेवन करी
0: बिल्कुल
1: वो शरीर में लगी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसने जन बाकी एक प्रकृति प्रेमी जन बाकी नवनीत कुमार मिश्रा जी से मुलाकात हो गई रहे अध्यापक हों तो प्राकृतिक संपदा के तरीके जन बाकी घातक हो रहा हो
0: छेड़ना घातक बा
1: ओके विषय पर बातचीत होते रहे तो जन बाकी गठिया के लिए ले भी आई ली।
0: अरे बिल्कुल भैया हम तो कहते हैं ना कि आप बात शुरू करें उनका जानकारी अपने सब पंच भैया लोगन एकदम टकटकी लगा के बैठल हुआ कि अपन भोला भैया कब शुरू करें जानकारी हम लोगन जानल जाए। तो देर कोने बात कर प्राकृतिक संपदा के छेड़ना घातक ये विषय में नवनीत कुमार मिश्रा जी देखा का कहते हैं।
2: श्रोताओं अभी हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधि ब्लॉक के हीराचक मोहली गांव में हैं और यहां हमारी मुलाकात श्री नवनीत कुमार मिश्र जी जो पेशे से शिक्षक हैं आपसे हो रही है और यहां की समस्याएं हैं जो पहले नदी पहाड़ किनारे झरने चलना शुरू हो जाते थे लेकिन अब इसका सर्वथा अभाव सा प्रतीत होता है। जल का संकट बहुत ही अधिक मात्रा में दिख रही है जहाँ जल जमा हुआ करता था। कभी कभी लोग यह भी कहते थे कि यहाँ नाग देवता रहते हैं और वहाँ पर जो है कभी पानी नहीं सूखता है आज वहाँ पर भी जो है कि पानी सूख जा रहे हैं। तो क्या कुछ आपका अनुभव है क्या विचार है आपसे बातचीत होगी। तो नवनीत मिश्रा जी आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम लोग यहाँ से मोहली से जब अपने पहाड़ी की ओर जाते थे तो ये जो मलिया नदी वगैरह पड़ना उसके बाद जो है कि रसोईया और वहाँ से जो हम लोग को मिलता था जो झरना बिल्कुल रसोईया के रास्ते रास्ते जो है कि सब पानी बहता रहता था लगभग पूरे सीजन मतलब लगभग जाड़ तक तो बहता ही था
3: जी।
2: और गर्मी में उसका थोड़ा कमी होता था फिर भी गड्ढी गड्ढा में
3: रहता था, लेकिन आज ये शब्द इसका देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण समझ में आता है?
4: जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि हमें आकाशवाणी उबरा से अपना विचार वक्तव्य को प्रसारण करने का अवसर मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे जो आपका गंभीर विषय है, जल का जो संकट हो रहा है, जल संचय में जो समस्याएं आ रही हैं, उसका सबसे जो एक हम कहेंगे कि जो मेजर समस्या है वो कम बारिश होना, ये भी एक कारण हो सकता है।
3: जी, जी, जी।
4: और दूसरा कारण ये है कि प्रकृति संसाधनों के साथ दोहन,
3: हाँ,
4: जैसे कि जंगलों का कटान हो रहा है लगातार,
3: हाँ,
4: लोग जो है जल से संबंधित जो भी स्रोत हैं, जैसे पहले झरना हुआ करता था, छोटे छोटे नाले हुआ करते थे, ये सभी नालों और झरनों को किसी न किसी तरह से समतलीकरण करते हुए या खेती युक्त भूमि बनाने के कारण उसको जो है नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जल जमाव नहीं हो पा रहा है, जल का कोई उचित स्रोत नहीं बन रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक मलिया नदी है, मलिया नदी का जलस्तर काफी तेजी से जो है खत्म हो रहा है। अभी कुछ समय पहले तक उसमें भी बाढ़ आया करता था, लेकिन अभी अब उसमें बाढ़ क्या, अभी ढंग से उसमें पानी नहीं मिलेगा आपको, जिसका एक मुख्य कारण ये है कि बीच बीच में लोग उसको जो है नदी के बीच में ही खेती करना शुरू कर दे रहे हैं।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
4: उसमें जो छोटे छोटे नाले थे जिनके माध्यम से उसमें जल भरा हुआ करता था, वो नाले समाप्त हो जा रहे हैं। मुख्य रूप से यही सब कारण है, हम जो है भौतिक संसाधनों के पर्याप्तता को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: और इसीलिए जो जल जीवन कहा जाता है वो जल जीवन जो है समाप्ति की ओर चला जा रहा है।
3: निश्चित रूप से तो बहुत गंभीर समस्या है
4: जी,
3: और इसी में व्यक्ति को जीना भी है
4: जी,
3: लेकिन ये सब जो स्रोत बंद हो रहे हैं ये बहुत चिंतनीय है। और नदी जो भी प्राकृतिक है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, उसका अगर दोहन होगा तो निश्चित रूप से बहुत ही संकट के सामना करना पड़ेगा। और अभी जिसे गर्मी में देखा गया कि पानी के लिए बहुत ललायत रहे लोग, दूर दूर से लाने का प्रयास किया, लोग टैंकर के माध्यम से लाना शुरू किए। पहले जहाँ की बात आती थी कि वो वहाँ जो है कि
4: छोटे छोटे जो है नलकूप के माध्यम से,
3: और इतना बड़ा अच्छा रिसाव होता था कि चुवाड़ी भी खोद करके आदमी जल जो निकालता, पेयजल, और वो कहाँ मिलने वाला है, बहुत करने के बावजूद भी, और फ्लोराइड की मात्रा, तमाम चीजें इसमें हो रही हैं।
4: जी, जी।
3: तो इसमें हम लोग क्या कुछ ऐसा इस परिस्थिति में भी कर सकते हैं जिससे कि बरसात होए और जो है कि जल रुक पाए, हम लोग कुछ ऐसा आपकी दृष्टि में हो तो उसको थोड़ा।
4: जी, इसमें देखिए, मुख्य रूप से हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो हमारे नाले हैं, जो छोटे छोटे नाले हैं, जो जल के उचित स्रोत हैं जिससे हमको जल प्राप्त होता है, जैसे अभी बारिश, बरसात का ऋतु है, इसमें जो बारिश हो रहा है, हम ये हर संभव प्रयास करें कि उस बारिश के जल को हम संचय करें। छोटे छोटे बांध बनाए, छोटे छोटे बौलिया का निर्माण करें, तालाब का निर्माण करें, जिससे कि उस वर्षा के जल को हम संरक्षित करें, नंबर एक। नंबर दो, कि जो आपके ये नदी है, मैं बड़ी बड़ी नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे जैसे कि जो सहयोगी नदियां हैं उन नदियों की बात कर रहा हूँ, आप कोशिश ये करिए कि उन नदियों के पानी को न रोका जाए। उन नदियों के पानी वो लगातार वो बहते रहे, वो बहते रहेंगे तो जो जल का सतह है वो मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: दूसरी बात ये है कि वृक्ष, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। कट तो बहुत ज्यादा संख्या में रहे हैं, लोग जो है खेती करने के पर्पज से या निवास के पर्पज से जंगलों का दोहन कर रहे हैं, समतली करण के लिए पर्वत, पहाड़, पठारी भाग को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो कोशिश ये किया जाए कि अधिक से अधिक जो है पौधे लगाए जाए। अभी जो सरकार का जो स्कीम है कि हर गांव में कम से कम एक जो है उद्यान होना चाहिए, बगीचा होना चाहिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने घर के अगल बगल कम से कम इतने पौधे तो हम अवश्य ही लगाएं जिससे हमको उचित मात्रा में ऑक्सीजन भी मिले और हमारा एक प्रकृति के साथ संतुलन भी बना रहे।
3: बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जी के लिए वन बहुत जरूरी है।
4: जी,
3: जहाँ जीवन दो शब्दों से मिलकर यहाँ जो दिख रहा है,
4: जी जी,
3: कि एक जी,
4: जी
3: और वन,
4: वन
3: जी रहेगा, हाँ, तो वन, वन का जी एक दूसरे से पूरक है,
4: दूसरे से पूरक,
3: तो अगर वन को नष्ट कर देंगे तो जी पे भी संकट आ जाएगा। और कभी कभार देखा जाता है नवनीत जी कि पहाड़ी पर भी जो है कि झरने चलते हैं,
4: जी
3: वो कहाँ से पानी आते हैं?
4: जी, जैसे अभी हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ये कहना चाहेंगे, अभी हमारे सोनभद्र में बहुत ही सुंदर घाटी मारकुंडी घाटी है, जो कि रावर्सगंज जिला मुख्य मुख्यालय के नजदीक है, वहाँ पे आप अभी चले जाइए, आमतौर पे बरसात के दिनों में तो आपको कई झरने दिखेंगे जो झरने के रूप में पानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो जैसे उनका एक मुख्य स्रोत होता है कुछ जलप्रपात जैसा एक स्थल होता है जहाँ से सतह जमीन के सतह से वो बरसात के दिनों में अपने आप ही वो जल बहाव होना शुरू हो जाता है, जो कि वहां से बहते बहते बहते बहते नाले का रूप ले लेता है और अपने नदियों में चला जाता है, और उसका जो है उचित रूप से वो जितने भी अगल बगल क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं से लाभ ही पहुंचाता है।
3: बिल्कुल, लगभग ऐसे ही हर जगह जंगल के आसपास में जो है कि झरने का रूप, जो जलप्रपात की बात आती है और होते हैं, पर जो है कि जो कृषि कार्य के लिए आपने बताने का प्रयास किया कि उसको वहीं पे जहां से जल निकल रहा है वहीं पे अगर बांध बांध करके उसका मिट्टी को जो है कि उसके ऊपर ढक दिया जाए तो उसका जो निकलने का स्रोत है वो बंद हो जाएगा।
4: जी, जी, बिल्कुल यही हो रहा है,
3: वहीं से जो है कि पानी जो है कि हम लोग
4: रुक जाता है, यही हो रहा है। देखिए आमतौर पर यही हो रहा है, अभी हम अपने खेती को बढ़ाने के लिए अपने

0: हर मकान को बढ़ाने के लिए मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं और जिससे नुकसान हमें ही हो रहा है।
1: बिल्कुल,
0: अब
1: बिल्कुल।
0: अब वो जो जलप्रपात की बात कर रहे हैं, जो झरने की बात कर रहे हैं, अगर वो झरना बंद हो जाए तो वो जो कृषि कार्य में हम उपयोग करते थे उसके पानी को, वो पानी बिल्कुल समाप्त हो गया। हम आधारित हो गए नलकूप के, हम आधारित हो गए समरसीबल के, मोटर के। अभी देखा जा रहा है, अभी जिस क्षेत्र में हम आप अभी हैं, इस क्षेत्र में 300-400 फुट तक की बोरिंग हो जा रही है लेकिन पानी का एक बूंद तक नहीं मिल रहा है।
1: बताइए बताइए, तो
0: सूखे की स्थिति,
1: कुआं में कहां पानी मिलेगा?
0: कुआं में तो एकदम जलस्तर पूरा खत्म हो गया, जबकि आज के जो है 10-15 साल पहले तक की स्थिति यह थी कि लोग कुआं का ही पानी पीते थे। गाँव में एक दो कुएं होते थे, हैंडपंप तो कहीं दूर दूर में शायद एक दो मिलते थे, नहीं तो कुएं के पानी से ही लोग आधारित रहते थे।
1: मैंने आरामदेह जीवन जीने के लालसा से व्यक्ति कहीं न कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।
0: जी,
1: अब जैसे होता है कि जो कच्ची घर के जो आनंद होता है,
0: जी जी,
1: और पक्की के जो लिपना पोतना ना पड़े,
0: हाँ।
1: और पता चला कि उसमें गर्मी में गर्मी, ठंडा में ठंडा, उसी प्रकार जो पानी के लिए कि हमको हैंडपंप ना चलाना पड़े, कुआं से पानी खींचना ना पड़े रस्सी से, इसके चक्कर में जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि जल स्रोत के ऊपर क्षति पहुंचा पा रहा है व्यक्ति। तो आपको रेडियो के माध्यम से बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं, तो उनको क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि जल हमको कितना बचाना चाहिए, मानव जीवन के लिए कितना, चाहे प्रत्येक जीव जंतु के लिए? हमें तो लगता है ये कि अगर एक दृष्टि डाली जाए, हल्का सा गंभीरता अगर लिया जाए, तो जल के बगैर कोई भी अस्तित्व नहीं है इस धरती और आसमान का। जैसे अगर पौधे की बात ली जाए, पौधे को जल चाहिए, और मनुष्य के लिए चाहे जितना जीव जंतु हैं,
0: हर
1: वहां पर अनाज भी उत्पादन करना है,
0: जल
1: तो जल चाहिए। तो इस प्रकार से एक तरह, एक बार अगर व्यक्ति भोजन के अभाव में कुछ समय रह सकता है, कुछ दिन रह सकता है, लेकिन हमें लग रहा है कि जल अगर ना हो
0: तो कल्पना नहीं किया जा सकता, जीवन
1: की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे श्रोता लोगों को?
0: देखिए, मेरा हर व्यक्ति से यह सुझाव रहेगा कि हम अपने जीवन में जल को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
1: जी,
0: हम उसको कर सकते हैं संरक्षित। जैसे पहले शुरुआत हम अपने आप से करें, हम जो अपने दैनिक जीवन में जो जल का उपयोग करते हैं, हम करते क्या है कि हमारे घर में नल लगा हुआ है, हम आमतौर पे गए हाथ धोए नल को खुला छोड़ देते हैं।
1: जी,
0: नहाने गए, नहाने में गए तो आवश्यकता से अधिक जल की हम बर्बादी करते हैं। हम खेत को पानी देते हैं तो हम पानी जैसे चला दिए तो वो उसको बंद नहीं करते, वो चल रहा है तो चल रहा है।
1: मतलब भी आगे जैसे बौछारी सिंचाई करते हैं,
0: जी जी, टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, इस तरह क्या जो भी सिंचाई है
1: जल को बचाया जाता
0: हम वैसे है, बचा सकते हैं। उसमें जो है हमको जानकारी की आवश्यकता है, जैसे कृषि कार्य करते समय हमें यह जानना चाहिए कि किस फसल को कितना जल की आवश्यकता है। हम केवल जल उसमें देते हैं जो कि बर्बादी होती है जल की। ये तमाम सारी चीजें हैं जिसके हम जो है जल का संरक्षण कर सकते हैं। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि पेड़ पौधों को बचा के रखा जाए और बाकी जो जल के स्रोत है, संसाधन है, उनका दोहन न किया जाए। नदी नाले झरनों को जो है बचा करके रखा जाए, तभी हम जल को जा सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है।
1: श्रोता लोग, ये जो है कि नवनीत कुमार मिश्र जी थे, एक शिक्षक हैं, और आपसे बातचीत हो रही थी जल संरक्षण के बारे में, और जल कितना आवश्यक है। लगभग आप निगाह दौड़ा करके देखेंगे तो सारे लोग के समझ में आएगा, और ऐसे अनावश्यक समझ करके ऐसे ही जो है कि चलाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो है जो पानी है तो है, लेकिन उसी पानी को अगर खरीद करके आप लीजिए तो पता चलेगा कि जो है कि कितना ये कीमती है। लेकिन प्रकृति द्वारा जो ऐसे ही मिल गया है, पर्वत मिल गए हैं, पहाड़ मिल गए हैं, पेड़ मिल गए हैं, पानी मिल गए हैं, रेत मिल गए हैं, पत्थर मिल गए हैं, तो हम उसका हिफाजत नहीं कर पाते हैं, और शायद इसी के वजह से अपना जल को चाहे सभी प्राकृतिक चीज़ों का दोहन कर रहे हैं और क्षति हो रही है, जिसका परिणाम हम लोग स्वतः भुगत पाएंगे, और लगभग शुरुआत भी हो गई है। तो सभी से आग्रह है, नवनीत जी का भी आग्रह है कि सब लोग जल संचयन करें और अपव्यय ना करें पानी का, और जो खेती पाती करने की बात है वो जरूरी है कि खेती में वृद्धि हो, पर ये भी जरूरी है कि पानी हम लोग को बचत हो। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए नवनीत कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: बोला भैया,
3: हाँ
2: इतना बढ़िया आप देखन जानकारी देवलन है, प्राकृतिक संपदा के छोड़ना घातक कितना होला। नवनीत कुमार मिश्रा जी के देखे बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए, और देखे एक हम तो कह कि धन्यवाद भी ऐसे नहीं, एक मन फिर के द्वारा अगर हो
3: बिल्कुल,
2: तो का पूछे के है तो असरफी लाल गुर्जर उनका संघाती भी लोगन देखे खेमटा सुनावे खातिर तैयार हुए, तो चले सुनल जाए।
3: सुना

0: लो बहन,
1: हाँ भैया,
0: देखो मन मनसान होए लवे के पहले कुछ संदेश भी और सब हम लोग सुनल गए। लेकिन सबसे बड़ बात की जन बाकी हम लोग जो खेती किसानी की बात जोन करल आदमी हर पंच भैया लोग और सब जानकारी के तो बात है ले
1: बिल्कुल
0: बातचीत के दरमियान होल कि पानी बचावे के हो लेकिन खेती भी करे के हो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन खेती करे के लिए जो पहले भी आदमी खेती करे टिकाऊ खेती होत रहे। खेत के जोतत जोतत जितने बार जोतित आदमी उतने जन बाकी नमी ऊपर आवे।
1: बिल्कुल
0: आज की स्थिति है कि नमी को कोई अता पता नहीं चलत। एकर कहे न कहे जो हम लोग गोबर की खाद जो पहले होत रहे और पत्ती सड़ करके जो ओकर खाद
1: जैविक
0: बने
1: खाद है, कहे मतलब
0: जैविक
1: जैविक खाद
0: खाद
1: का प्रयोग।
0: जीवांश की
1: हाँ
0: मात्रा जो रहे वो बिल्कुल जमीन में अभाव हो रहा है। ओके प्रति फिर से लोगन के जोन बाकी रुझाव हो रहा है।
1: बिल्कुल
0: सरकार के भी बार बार कहना है कि जोन बाकी जैविक खेती की ओर मुड़े,
1: बिल्कुल
0: मोटा अनाज पैदा करें और साथ साथ खेत के मेड़ पर पेड़ लगाएं, पेड़ से पत्ती झड़ी
1: बिल्कुल
0: और ओकर जोन बाकी खाद बनी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जोन कम, चूंकि पशुपालन अब जंगल कम हो गई तो पशुपालन भी कम हो रहा है, कम गोबर में अधिक से अधिक कैसे खाद हम बनाए, जैविक खाद,
1: बिल्कुल
0: ए
1: बिल्कुल
0: विषय पर चिंतन चल रहा है। तो नाडेप कंपोस्ट बनावे के, वर्मी कंपोस्ट बनावे के विधि तमाम वैज्ञानिक लोग बता रहे हों।
1: बिल्कुल
0: तो नाडेप कंपोस्ट बनावे खातिर अगर हम लोग बातचीत कर जाए तो निश्चित रूप से जोनबा की एक टैंक हम लोग बनाए
1: हाँ
0: और हमें जोनबा की 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और जोनबा की 3 फीट ऊंचा और बीच बीच में जोनबा की जाली भी रहे हमें,
1: तो छेद रहा है बीच
0: हाँ
1: बीच में।
0: छेद रहे ताकि वो हमें जोनबा की टैंक के अंदर जोनबा की हवा आ जा सके।
1: बिल्कुल
0: और एक तैयारी के बाद जोन बाकी हम लोग जोन बाकी वो में जोन फसल के अवशेष है ओके हम लोग जोन बाकी डाली।
1: बिल्कुल
0: सबसे पहले हम लोग जोन बाकी गोबर के, गोबर और पानी मिला करके
1: अच्छा
0: बिल्कुल जोन बाकी नीचे के परत और दीवार के पोताई कर लें और फिर जोन बाकी फसल अवशेष या जितना भी खर पतवार हो जोना में कंटीला चीज ना हो ओके जोन और दूध वाला ना हो ओके हम लोग जोन बाकी सबसे निचले सतह पर डालें।
1: अच्छा
0: एकरे बाद जोन बाकी गोबर 3 से 4 किलो गोबर 100 लीटर पानी में, लगभग 100 से 200 लीटर पानी में घोल करके बढ़िया से और वो जोन बाकी खर पतवार के ऊपर छिड़क दें ताकि बढ़िया से वो गीला हो जाए,
1: बिल्कुल
0: भीग
1: बिल्कुल
0: जाए। फिर ओकरे ऊपर जोन बाकी एक परत हम लोग मिट्टी की डाली
1: अच्छा
0: और एकरे बाद क्रमशः यही तरीके जोन बाकी फिर खर पतवार, फिर गोबर के जोन बाकी गोबर पानी के मिलावट जोन
1: घोल
0: बाकी हाँ घोल, फिर एकरे बाद जोन बाकी मिट्टी, ये तरीके क्रमशः जोन बाकी 10 से 12 बार हम लोग डाली और तब से जोन बाकी टैंक के एकदम ऊपरी पर ऊपर चलाई।
1: अच्छा
0: और जिस तरीके मड़ई के छजनी होला ना गोलाकार वो तरीके तक जोन बाकी हम लोग एक ऊपर तक भरते हैं और अंतोगत तो देखल जाए कि जोन बाकी हफ्ता 15 दिन में, 20 से 25 दिन में जोन बाकी वो दब जाए।
1: अच्छा
0: जब ये हुई ना ये जो खर पतवार है वो जब थोड़ा सा गले लगी सड़े लगी तो दब जाए और तब फिर जोन बाकी कहीं कहीं हम लोग देखब कि हमें जोन बाकी दरार सा दिखाई दे।
1: अच्छा,
0: तो दरार दिखाई दे तो फिर गोबर और कौन पानी के घोल से
1: ओके लेप देवल जाए।
0: ओके फिर वो दरार के भर दे लग जात
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पानी छिड़काव भी कर दे। अब पता चल कि हम लोग के जोन बाकी लगभग 90 से 120 दिन में खाद हमें बन के तैयार हो जाए
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: लगभग समझ जाए कि 2.5 टन एक टैंक से
1: हाँ
0: जोन बाकी हम लोग के मिल जाए जो 1 हेक्टेयर में लगभग डाले के लिए हो जाए।
1: बिल्कुल
0: और उससे वो अगर खाद हम लोग डालब तो एक पहली बात तो जो हम लोग के रासायनिक खाद दवा की आवश्यकता पड़ला उससे बचत हो जाए
1: बिल्कुल
0: और जो हम लोग पैसा लगा करके खरीदल जाला वो नहीं जो खरीदे के पड़ी। दूसरी बात जो पानी अंधाधुंध हम लोग डालत हैं पानी डाले के नहीं पड़ी, एक बार पानी डाला जाए तो जन बाकी के 2-3 पानी भर के औसत रखी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और जीवांश की मात्रा बढ़ी, उर्वरा शक्ति बढ़ी और फसल
1: बिल्कुल
0: उत्पादन हुई और हमें जन बाकी पौष्टिक आहार अनाज
1: बिल
0: उत्पन्न
1: बिल्कुल
0: हुई।
1: बिल्कुल और देखा
0: बिल्कुल
1: ऐसा करे से अपन जोन माटी माई है वो भी देखा स्वस्थ रही है। कहें कि जोन भी माटी माई में जोन भी रासायनिक खाद के पावे की वजह से जोन अपौष्टिकता जोन दिखा

0: हाय दिव्या, जो घातक बीमारी के रूप में सामने आवला, तो देखा इसने में जब जैविक खाद का कम जो आप बतावत हमें
1: बिल्कुल
0: खाद का प्रयोग कई तरीका से करल जाए, हम लोगों ने अगर तरीका अपना लेवल जाए तो हम लोगों के कहीं ना कहीं देखा बहुत लाभ लेकर देखे के मिली। और देखा हम तो कहब ना कि आज अपने कार्यक्रम में अपने पंचायती में भी हम लोगों जानकारी सुनल जाए,
1: बिल्कुल
0: अपन जैविक खाद प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार। अपन जो देखा डॉक्टर जय नारायण तिवारी भी हुआ, जो उनके नव अन्वेषी कृषक हुआ, उनसे मुने भी है कि भेंट मुलाकात रहल, उनकर जानकारी बा ओके सुनल जाए। लेकिन ओकरे पहले ना तो हम तो कहब कि देखा खेती किसानी करे के पहले जब आदमी मौसम का जानकारी ले वाला
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: के
1: बिल्कुल
0: का मौसम का अपन रुख
1: ये
0: दिखावत
1: समय
0: बा
1: कैसा रुख है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो बिना
1: बिल्कुल
0: अब मौसम का जानकारी सुने खातिर अपन शिव मंगल सिंह जी जो मौसम वैज्ञानिक हम
1: ये
0: बेचू
1: चूज
0: से
1: है। हाँ
0: उनका
1: बिल्कुल
0: देखा जानकारी काबा ओके सुनल जाए।
1: तो सुनावे।
2: किसान भाई लोग देख रहे हैं, हम लोगों मौसम का जानकारी आज शिवमंगल सिंह साहब से ले थे। अगले मंगलवार तक कैसन मौसम रही अपने अंचल में खास तौर से, तो आज जानकारी हम लोग जानल जाए। डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: नमस्कार किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं किसान भाइयों, मौसम पूर्वानुमान के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात
1: जी
3: की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में अगर हवा की गति की बात करें तो वो सामान्य से अधिक रह सकती है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो इस दौरान जो है अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने का अनुमान है। और वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड बीच की रहने की संभावना है।
2: जी ऐसने स्थिति में जो अपन किसान भाई लोग हम सामयिक कार्य का करें डॉक्टर
3: तो
2: जी।
3: किसान भाई अभी क्या करेंगे, जो मुख्य फसल है अभी धान की मुख्य फसल है, तो जो किसान अभी रोपाई नहीं कर पाए हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद बरसात है, मतलब आने
2: जी
3: वाले दिनों 2-3 दिन तो है, लेकिन उसके बाद का अनुमान हो सकता है बारिश फिर से ना कम हो या फिर एक हफ्ता ड्राई स्पेल हो जाए। तो इसको देखते हुए किसान भाई क्या है कि जो पानी पे आश्रित खेती है, जैसे कि धान की रोपाई मेन है,
2: जी
3: उसकी रोपाई जितना जल्दी हो सके पूरा कर लें, और साथ ही साथ अपने धान के खेतों में जो है मेड़बंदी का उचित व्यवस्था करें, जिससे कि जो बरसात का पानी है वो आपका फालतू कहीं नदी नाले में न चला जाए। और वहीं अगर फसलों की बात करें जो अभी खेत में है, जैसे कि अरहर मक्का तिल इन सब में की बात करें, तो आप किसान भाई इन सब खेतों में जो है पानी का ठहराव न हो,
2: जी
3: जिससे कि ये फसल गल ना पाए और इनको जो है नुकसान ना हो। और पशुओं को ऐसे में क्या है कि चूंकि लगातार मौसम खराब है तो पशुओं को छायादार स्थान पे ही बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और
2: जी
3: उनको पीने के लिए जो है शुद्ध पानी की व्यवस्था करें, साफ पानी की व्यवस्था करें, और चारों का ऐसा उपयोग करें जो उससे फफूंदी न लगाओ, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय लगभग एक हफ्ता से बरसात का मौसम बना हुआ है।
2: जी
3: कभी कभी क्या होता है कि जो चारा हम रखे होते हैं उसमें फफूंदी या फिर कुछ फंगस लग जाते हैं, और हम किसान किसान भाइयों को ध्यान देना है कि ऐसे चारों को पशुओं को न खिलाएं
2: जी
3: जिससे कि वो बीमार न हो। और खास तौर से किसान भाइयों इसका भी ध्यान दें कि भाई पशुशाला में जल भराव न हो, मच्छरों का प्रबंधन करें, जिससे
2: जी
3: कि आप अपने अपने फसलों के साथ साथ अपने पशुओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब, जौन आपका सलाह रहा जानकारी रहा, ऐसे अपन जौन किसान भाई लोग हम जौन अपन पंच भैया लोग हम जरूर लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
0: भोला भैया
1: हाँ गुलाब
0: देखा कितना बढ़िया अपन मौसम का जानकारी देलन है शिव मंगल
1: बिल्कुल
0: सिंह
1: बिल्कुल
0: भैया,
1: बिल्कुल
0: और देखा हम लोगन भी उनके धन्यवाद देवल जाए। और देखा जैसे उनकी चर्चा हम लोगन करत जाते रहल कि अपन जैविक खाद के तरीका से अपने प्रयोग हम लोगन करल जाए, तो यही विषय पे जो जैविक खाद प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, डॉक्टर जय नारायण तिवारी भैया से जो उनके नव अन्वेषी कृषक हम उनसे सुनील कुमार तिवारी भैया की भेंट मुलाकात भेल बा। हम तो कहते है ना कि बिना देर कैले इनकर जानकारी जो न चले सुनल जाए।
4: किसान भाई लोग देखे हैं हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और आज का जो खेती बा वो रासायनिक खाद और रासायनिक दवा पर निर्भर बा। लेकिन जौन रासायनिक खाद रासायनिक दवा का मोह बा, ये मोह के हम लोगन कैसे छोड़ी एकरे बारे में भी हम लोगन के सोचे के पड़ी, विचार करे के पड़ी। हम लोग रासायनिक खाद का मोह कब छोड़ब, जब जैविक खाद के महत्ता के हम लोगन समझब। त आज किसान भाई लोग देखें चोर मुसही में हमार मुलाकात हो गई बा

0: डॉक्टर जयंत तिवारी साहब से, आपसे आज हम लोग जानब कि वास्तव में जैविक खाद का महत्व का बा और ओके कैसे अपन किसान भाई लोग अपनावे और रासायनिक खाद रासायनिक दवा का जोन मोह बा ओके छोड़ें। जयंत तिवारी साहब नमस्कार।
1: नमस्कार तिवारी जी।
0: ये बतावें कि जोन किसान भाई लोग बाया वो रासायनिक खाद के तरफ बहुत अधिक जोर देते हम, तो वो कैसे अपने आप के या अपने मुख के दूसरी तरफ मोड़ा
1: है? ऐसा है कि सबसे पहले किसानों के सामने समस्या आती है कि उत्पादन हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, और वही एक मुख्य कारण है
0: जी,
1: जिसकी वजह से वो रासायनिक खादों की तरफ भागते हैं।
0: धारणा
1: ये बन गई है कि जैविक खाद खेती करेंगे तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा, बिकेगा नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा
0: जी।
1: तो ये भ्रांतियां बहुत है इसमें। जैविक खेती को तीन हिस्सों में बांटे आप, और खाद को भी तीन हिस्सों में बांटे
0: जी। जी
1: पहला तो यह है कि आप जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, वो ले लें, या अपने खेत से जो निकल रहा है खरपतवार उसको खाद बनाए उसको ले लें। एक
0: जी।
1: तो वो श्रेणी हो गई।
0: दूसरी
1: श्रेणी हो गई जो हमारे जैविक पौधे हैं, जैसे मूंग है, नैचा है, और तीसरी श्रेणी है बैक्टीरिया की
0: जी।
1: तो अगर तीनों को मिला के अगर हम खेती करें तो उत्पादन में मात्र 10-15% का अंतर पड़ता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। उसका कारण बताता हूँ आपको कि अगर हम केवल कंपोस्ट की बात करें, वर्मी कंपोस्ट की बात करें, तो जितना हमको हम धान का एक उदाहरण ले लेते हैं। धान में मान लीजिए हमको नाइट्रोजन चाहिए, 45 किलो यूरिया एक बीघा में डालते हैं लोग
0: जी, जी।
1: तो करीब 17-16 किलो नाइट्रोजन मिलता है। अब 16-17 किलो नाइट्रोजन हमको पूरा करना है
0: जी
1: जैविक खाद से।
0: वो
1: कैसे पूरा होगा कि अगर कंपोस्ट आप भरपूर दे रहे हैं, 3-4 ट्रॉली दे दें या 1 टन के आसपास एक बीघे में, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या आपके अपने खेत से उत्पन्न जो खरपतवार है उसको सड़ा
0: जी,
1: तो आपका लगभग 1/3 नाइट्रोजन मिल जाता है
0: जी। जी
1: उसी में अगर मूंग लगा दें, आप गर्मियों में जो जायद की फसल होती है मूंग, या मूंग नहीं लगा पा रहे हैं, इतना पानी नहीं है, तो आप ढैचा लगाए जिसकी वजह से आप करीब 25-30% नाइट्रोजन और पा सकते हैं
0: जी।
1: तो कुल मिला के आप देखेंगे तो करीब 70% नाइट्रोजन आपको इन दोनों से मिल जाएगा, अगर
0: बिल्कुल
1: आपने संख्या ठीक रखी तो। उनकी खेती भी थोड़ी घनी होनी चाहिए, 1 टन के आसपास खाद होनी चाहिए
0: जी।
1: अब यहीं पे बैक्टीरिया का आता है जिसका प्रयोग हम लोग अभी तक नहीं कर रहे थे। तो सबसे बढ़िया प्रयोग किया हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ने गाजियाबाद में,
0: जिन्होंने
1: वर्मी ये बनाया था आपका वेस्ट डिकम्पोजर
0: जी। जी
1: और वेस्ट डिकम्पोजर का ये हाल है कि अगर आप उसको जितना उनकी आवश्यकता है 1000 लीटर एक बीघे में डाल देते हैं, जो अच्छी तरह से डाला जा सकता है
0: जी,
1: तो आपको और लगभग 15% के आसपास यूरिया नाइट्रोजन मिल जाता है
0: जी।
1: इसके साथ साथ और भी बैक्टीरिया आए हैं, जैसे ये है मेरे सामने में एजी प्रोविन बैक्टीरिया
0: जी,
1: ये 25% नाइट्रोजन वातावरण से लेके दे देता है।
0: अच्छा,
1: इसका एक सबसे बड़ा गुण है। तो इसको अगर हम प्रयोग लाएं तो कुल मिला के देखिए 80-90% नाइट्रोजन पूरा कर लेते हैं
0: जी।
1: और मैं कर रहा हूँ खेती, मेरा धान दादा कराउंड में खाता हूँ
0: जी,
1: और जो अपने इष्ट मित्रों को बेचता हूँ पूरा ऑर्गेनिक है, उसमें बिल्कुल डीएपी यूरिया नहीं है
0: जी।
1: तो ये अगर आप कर लेना तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं
0: जी।
1: अब उनके सामने समस्या आती है कि पेस्टिसाइड क्या है, मतलब आज जो पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चलती है खाली पेस्टिसाइड की वजह से ज्यादा चलती है
0: बिल्कुल।
1: तो पेस्टिसाइड हमने बहुत बढ़िया बनाया है और सब लोग कहते हैं उनको मेहनत नहीं करता है, वो अमृत जल, अमृत गंगा, ये सब कई नाम आए हैं ना
0: जी।
1: तो हमने अपने यहाँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जितने भी प्रतिनिधियां थी, जितना वो तना काटक कीटाणु थे
0: जी,
1: तो सारे के सारे इस बार हमने धान में उसी जैविक
0: जी,
1: और बनाया हमने उससे, केवल उसमें धतूरा है, मदार है, नीम है, और आपका लहसुन है, मिर्चा है, पीस दीजिए, 24 घंटे उसका जूस निकाल लीजिए और फिर आप बढ़िया खाद बना सकते हैं, बढ़िया ये जीवाणुओं को मारने के लिए बना सकते। तो आप देखेंगे कि इनकी वजह से आपकी पैदावार मात्र 10-15% कम हो रही है, और ठीक है बाजार भाव नहीं मिलेगा, लेकिन 10-15% बाजार भाव तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य
0: बिल्कुल,
1: और तब आपकी पूरी कमाई जो आप सोचते हैं कि घट जाएगी नहीं करेंगे तो

0: लगभग बराबर हो जाएगी। और ये जागरूकता आनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम बीमारियों का खर्च नहीं उठा पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: इतनी ज्यादा बीमारियां आ गई हैं और देखिए ना, कोरोना के लिए पूरा संसार ही त्रस्त है।
1: बिल्कुल,
0: और वो कहा जा रहा है कि प्रोटीन अगर इम्यून है तो कुछ नहीं होगा, तो इम्यूनिटी तभी आएगी जब आप स्वस्थ भोजन करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: और फिर वहां पे जैविक खाद्य पदार्थ चाहिए और वहीं पे आपको जैविक खाद भी चाहिए। तो कुल मिला के एक अपने विचारों को बदलने की बात है।
1: बिल्कुल,
0: कैसे बदलेंगे और संसाधनों का उपयोग। अब देखिए, ये बैक्टीरिया यहाँ कहीं नहीं मिलता है, इसको हमने तमिलनाडु से मंगवाया है
1: जी।
0: तो कुछ इस तरह की जागरूकता भी अगर हमारी सरकार भी कर पाए या कुछ ऐसी संस्थाएं जो इस पर काम करें और उनको उपलब्ध कराएं। प्रश्न केवल कहने से नहीं होगा, वर्मी कंपोस्ट हम ढूंढते रहे, हमको मिला नहीं
1: जी।
0: तो हम फिर गांव का गोबर लेके उसको छनवाए, छनवाने के बाद में खाद बनवाया, करीब 40 ट्रॉली हमने अपने खेत में डाला।
1: बिल्कुल,
0: उपलब्ध ही नहीं। तो उपलब्ध भी करवाएं, जागरूक करें, उपलब्धता हो, तब तो ये पूरा का पूरा प्रयोग आपका जैविक खेती का।
1: सही बात कहते हो आप। अच्छा, जौन अपन किसान भाई लोग हवा वो जौन जैविक खाद बा तैयार कर लेते हुआ, लेकिन उकर प्रयोग सही तरह से अपने खेत में नहीं कर पाता, तो वो कैसे करें?
0: देखिए, इनका जो वर्मी, ये जो जैविक खाद के लिए वेस्ट डिकम्पोजर जो बनाया है, पिछली बार भी मेरी चर्चा के इन्होंने तो मैंने सुझाव दिया था कि अपने खेत का एक किनारा
1: जी
0: आप अपनी जितनी अवशिष्ट पदार्थ है उनको लाके डाल दीजिए। पुआल है, जलाते हैं पुआल
1: जी,
0: पुआल है आपके। अब तो हमारे यहाँ तो बहुत पत्ता कटान पौधों पत्ते डालियां छोटी जितनी हम सब डालते रहते हैं
1: जी, जी।
0: आपको तो आप उस क्षेत्र में जितना क्षेत्र में रखा है हर 20 दिन 21 दिन के बाद में बहुत अच्छी खाद बना पाए।
1: बिल्कुल,
0: चाहे कोई भी सीजन हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, गर्मी में थोड़ा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बैक्टीरिया को पानी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और फिर कोई समस्या ही नहीं है, आप अपनी खाद अपने खेत के लिए तैयार हो जाएगी। हमारी चूंकि बड़ी लंबी खेती है तो इसके लिए हम अपने उस क्षेत्र में बना नहीं पाते हैं उतना
1: जी।
0: तो हमने ये फिर बैक्टीरिया भी लिया जो लाभ दे रहा है, और साथ ही साथ एक चीज और कहना मैं भूल गया
1: जी,
0: ये अभी एक प्रयोग और बहुत सफल हुआ है जो आपका नीम की खली और सरसों की खली
1: जी,
0: इसको एक मिश्रण बना के और अपने खेत में आप लगभग 15 किलो से 20 किलो एक बीघे में डाल दीजिए
1: जी,
0: तो ये उत्पादन बढ़ा देता है, क्योंकि बैक्टीरिया को जन्म देने का ये वो सेंटर मिल जाता है, वहीं से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं
1: जी जी।
0: तो पता चलता है कि आपके खेत में अपने आप भर जाएगा। तो खेती में अगर खाद नहीं भी मिलता है तो आप इनको लेके और बैक्टीरिया के माध्यम से वही वातावरण और वही संख्या तैयार कर सकते हैं। वो हमने यहाँ किया है, हम आपको पौधों में दिखाएंगे जो
1: जी जी। बिल्कुल सही बात आप कहत हो, अगर अपन किसान भाई लोग नीम का खली, सरसों का खली अपने खेत में प्रयोग करें तो निश्चित बाकी बैक्टीरिया बढ़ी हैं। अच्छा, चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के जयंत तिवारी साहब और का सहेजल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए?
0: देखिए, जैविक खेती का काम निरंतर करने वाला काम है
1: जी।
0: तो ये ऐसा नहीं है कि हम इस एक फसल में कर ले और दूसरे में छोड़ दें। तो इसको आप, मेरा निवेदन उनसे है कि, और मेरा सुझाव भी है कि इसको आप वर्ष भर करते रहिए, प्रयास करते रहिए और खाद पैदा करते रहिए, आपको कभी कमी नहीं होगी, बल्कि एक्सेस हो जाएगा, पड़ोसियों को बांटना पड़ेगा अगर आप रियली साल भर अपने खेत में करते हैं उसको।
1: बिल्कुल सही बात कहता हूँ, अगर अपने किसान भाई लोगों के टिकाऊ उत्पादन लेवे के बाद भूमि का उपजाऊ क्षमता जौन बा बराबर बनाए कर रखे के बाद तो निश्चित बा कि जैविक खाद के महत्ता के समझे के पड़ी। जयंत तिवारी साहब, आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया जानकारी का बात भइल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बोला भैया, देखा कितना बढ़िया जानकारी रहल है, जैविक खाद प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, डॉक्टर जय नारायण तिवारी भैया बहुत फरिया के जानकारी देलन है, उनके देवल से बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल धन्यवाद, और जौन बा की हमारे हाथ में एक पाती भी लग गई ल।
2: बिल्कुल,
3: दुद्धि मंडी के है, कुंतल में अजय कुशवाहा भैया भेजले हूँ।
2: अच्छा अच्छा,
3: और
2: हम तो कहते हैं भैया कि बिना देर कहले अपने पंच भैया लोगन के अब दुद्धि मंडी का क्या बाजार भाव बा आज का बांच के आप बतावे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो लाल वाला आलू है आज 1300 रुपया कुंतल।
2: अच्छा,
3: और वही सफेद की आलू है 1200 रुपया कुंतल। भिंडी 700 से 800 रुपया कुंतल, करेला 2200 से 2500।
2: अच्छा,
3: और तरोई है, झिंगी भी कहा लालो 2500 रुपया कुंतल, और टमाटर 2000 से 2200 रुपया कुंतल, मिर्च रहल 6000 रुपया कुंतल,
2: अच्छा,
3: खीरा 3000 से 3500 रुपया कुंतल, वही लंबा वाला बैगन

0: रुपया कुंतल, सूरन
1: अच्छा।
0: रहल आज 3500 से 4000 रुपया कुंतल दुधी मंडी में, और वहीं कच्चा केला 2000 से 2200, और कच्चा पपीता 1000 रुपया कुंतल, और पका पपीता 2000 से 2500 रुपया कुंतल,
1: अच्छा
0: अमरुद 1200 से 1500 रुपया कुंतल, और मशरूम रहल 200 ग्राम पैकेट वाला
1: हाँ
0: 35 से 40 रुपया पैकेट,
1: अच्छा।
0: और आमड़ा रहल 1500 से 1600, बहुत लोग लेकर के जौन बाकी अचार
1: अचार
0: डाला
1: बनावन,
0: था,
1: बिल्कुल
0: वहीं
1: बिल्कुल।
0: कटहल रहल 1200 से 1500 रुपया कुंतल, फूल गोभी 6000 से 6500, और
1: अच्छा।
0: पत्ता गोभी 3200 से 3500 रुपया कुंतल, गाजर रहल आज दूधी मंडी में 2800 से 3000 रुपया कुंतल, और करौंदा रहल 18 से 2000, धनिया 15000 से 20000 रुपया कुंतल, और नींबू रहल 200 से 250 रुपया सैकड़ा।
1: अच्छा,
0: ये रहल दूधी मंडी के बाजार भाव।
1: तो भैया के
0: अजय
1: देवल जाए,
0: कुशवाहा भैया के बहुत बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत
0: हो।
1: धन्यवाद। और देखें धन्यवाद भी ऐसे नहीं, अगर एक मन फिर हो तो का पूछे के हाँ तो
0: तो
1: देखें।
0: असर फिलहाल गुलजर उनकर संगतिया भैया एकदम तैयार हो मन मनसान कराया
1: बिल्कुल, तो
0: खातिर,
1: पूर्वी किसानी चैनल सुनल जाए।
0: तो सुनाओ मैं।

0: लाओ बहन,
1: हाँ भैया
0: इतना बढ़िया मन मनसाने करुणा सर फिलहाल गुर्जर उनका संगत्या भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और लेकिन ये समय देखा पानी बरखा के समय चल रहा है, लेकिन बादल तो हो लेकिन फूल के बरसात नहीं होत बा।
1: बिल्कुल
0: ऐसे जोन बाकी किसान भाई लोग कुछ तो चिंतित भी हम कि कब पानी बरसे, कि जगह बिया तैयार हो धान रोपाई करें, तो हम लोग के जौन भी जुगत हो सके जल संचय के खातिर कोशिश आदमी करे के चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: अधिक से अधिक मेड़बंदी करें, और साथ साथ जन बाकी अगर बाद में सिंचाई के भी जरूरत पड़ला सूखा के समय में तो स्प्रिंकलर वगैरह के बौछारी सिंचाई के प्रयोग करें, जिससे
1: बिल्कुल
0: अधिक पानी खपत ना हो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो अपने खेत के पानी बह करके नदी तक ना जाए, खेत
1: बिल्कुल
0: में ही रहे।
1: यही बात के साथे
0: बिल्कुल
1: देखा अपन कार्यक्रम भी समेटे का हो रहा बा बकत, तो हम तो कहते हैं समय से अपने घर द्वारे चली, कहे कि बरसात का समय बा भैया, कब कहाँ कहाँ निकल जाए, और लालटेन का रोशनी कर तेज,
0: बिल्कुल
1: और चला
0: बिल्कुल
1: चले के, तो सब
0: सब
1: पंचन
0: पंचन के
1: के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत FM 102.7 पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं अशरफीलाल गुर्जर और इनके साथी। आइए सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में कहरवा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे खेमटा, आकाशवाणी ओबरा से। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं अशरफी लाल गुर्जर और इनके साथी। अब ये सुनते हैं खेमटा इनके स्वर में।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको जानकारी देते आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की।

रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स और रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। म्यूजिक गैलरी ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10 बजे। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा सबरस। श्रोताओं, एक बार पुनः बता दें कि रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे करंट अफेयर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रविशंकर गुप्ता पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी कहुआ नाला थाना अनपरा जनपद सोनभद्र जो दिनांक 30 मार्च 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 25 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट 3 इंच, हुलिया गेहुआ रंग, गोल चेहरा, शरीर की बनावट सामान्य है और पहनावा है चेकदार पैंट और शर्ट। श्रोताओं, एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार बिंदु पत्नी शिवदास निवासी ग्राम आशाताली थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र जो दिनांक 8 मई 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 39 वर्ष लगभग, लंबाई 5 फीट, हुलिया गोरा रंग, गोल चेहरा, काली आंख, काले बाल, पहनावा कत्थई रंग की साड़ी और आसमानी ब्लाउज। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक

0: के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी, केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण, कहा बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।
2: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
3: युवा हमारा देश का भविष्य, और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट, और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है। और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की, और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया, लाखों परीक्षार्थियों को भाग। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दे ताकि उसका कानून बनावे नया, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को

0: होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भव्य रसायन योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
1: भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और 5 इयर्स रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा।
0: नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 7,740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में कल कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। शामली में प्रदेश के अधिकारियों और हरियाणा प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, CCTV निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर चर्चा की गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
2: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम जन हो या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी एक बैठक की गई थी, जिसके मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:31 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म लुका छुपी से अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाजों में।

मैं तेरा हीरो इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। इस गीत को लिखा था कौसर मुनीर ने और संगीत था साजिद वाजिद का। आकाशवाणी ओबरस इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है यस बॉस। शब्द रचना जावेद अख्तर के और संगीत है जतिन ललित का।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: कार्यक्रम में अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है सत्यमेव जयते, इस फिल्म से आतिफ असलम और तुलसी कुमार की आवाजों में। शब्द रचना कुमार के हैं और संगीत है रोचक कोहली का।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अभय देओल, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर को। जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने।

0: यंगस्टर इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। कौशल मुरीर के बोल थे और संगीत था जीत गांगुली का।
1: आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है।
0: और इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ पलों में यानी कि रात्रि के 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है, ठीक लीजिए 8:00 हुए हैं 16 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ प्यारे से फिल्में गीत, जिसमें आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का हम आशा जी के साथ, भूपेंद्र की आवाज के साथ, और गीत किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है।

0: जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.7 पे ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: चीनी कम इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को, समीर के बोल थे और संगीत था इलियाराजा का।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म में। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण को। समीर के बोल थे और संगीत था जतिन ललित का। हर्टलेस कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से ऐश किंग और अरुणिमा भट्टाचार्य की आवाजों में। अराफत महमूद के बोल हैं और संगीत है गौरव दागुनकर का।

एफएम 102.7 पर आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आइए जावेद अख्तर के लिखे इस गजल को सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

शब्द रचना जावेद अख्तर के थे और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को। और इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है।

0: 102 दशमलव सात पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
4: स्वामी हरसेवानंद शिक्षा संस्थान,
5: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चुर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
4: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चुर्क में बीए बीएससी बीकॉम बीबीए
5: एमए एमएससी एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
4: स्वामी हरसेवानंद शिक्षा संस्थान।
0: FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
8: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
7: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
7: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
10: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
7: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है।

0: बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमा बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अभिनेत्री इस फिल्म में सुनते हैं लता मंगेशकर को। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कपिल आजाद के लिखे इस गीत को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कर्तव्य इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और इसी के साथ कार्यक्रम भोले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करेंट अफेयर्स।

तो आइए अब शुरू करते हैं गीतों के इस खूबसूरत कारवां को। सुनते हैं फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम में जो हम पहला मेल शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है J.N. यादव जी ने अपने फरमाइश के इस गीत को सुनने के लिए बोधडी दुग्धी सोनभद्र से। और इस गीत को साथ में सुनना चाहा है सजल सुग्रीव और अखिलेश ने। तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आप सभी के लिए।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। अब अगले गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से विंटमगंज सोनभद्र से भेजा है प्रभाकर, कृष्णा और सुदीप जी ने। तो चलिए नदिया के पार का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से FM 102.7 पर और कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। श्रोताओं, आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं, हमसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं।

चाहते हो तो हमें मेल कीजिए। ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। श्रोताओं, अब जो मेल आया है जिसे भेजा है हितेंद्र दास ने सोनबिल कुदाली असम से, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दबंग का गीत और इन्होंने डेडिकेट किया है इस गीत को अपने साथियों को जिनके नाम है शिवा गोपे झारखंड से, दुर्गेश नागनपुरे मध्य प्रदेश से, ओडिशा से नारायण प्रधान, अंकित यादव उत्तर प्रदेश से, अविनाश दिल्ली त्रिपुरा से, रेकवे लिक मेथा नागालैंड से तथा मीनाल अहमद, अमल, बिमल, भाईको, प्रेमजीत, विक्रम, स्वराजीत, सुमोन, सुमित और जॉय मोती असम से। और साथ ही साथ आकाशवाणी ओबरा के सभी सदस्यों को इन्होंने इस गीत को डेडिकेट किया है। तो चलिए हितेंद्र दास जी, आपकी फरमाइश पर आप सभी के लिए ये गीत।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा एफएम 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। श्रोताओं, और अब जो ईमेल हम कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं वो हमें भेजा है उत्तम सिंह जंगेल जी ने कोही का भिलाई से, और इन्होंने एक विचार साझा किया है कि रेडियो और प्रसारण की आवाज जितनी दूर तक पहुंचती है उतना ही दूर तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचना चाहिए। धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है, आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें। और इनकी फरमाइश का जो गीत है इनके साथ सुनना चाहते हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल और साथ में इनके बच्चे भी, और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल ने। तो चलिए आप सभी के लिए फिल्म किस्मत का ये गीत, आवाज है महेंद्र कपूर की, सुनिए खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, अनिल घोटके जी ने हमें अपनी फरमाइश लिख भेजा है ईमेल के माध्यम से, जो जुड़े हुए हैं एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय सिल्लोड छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से। आपने सुनना चाहा है फिल्म आराधना का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इनके कुछ खास मित्रों के नाम हैं वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके और यज्ञेश घोटके। आप सभी के लिए ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम में जो अगली फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं वो हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है चंदन कुमार जी ने डाला सोनभद्र से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म गैम्बलर का ये गीत, और साथ ही में इनके साथ सुनना चाहते हैं इस गीत को सुमेधा, रुचि और परिवार के सभी सदस्य। तो चलिए इनकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म गैम्बलर का ये गीत।

श्रोताओं, अब जो ईमेल के माध्यम से फरमाइश आई है चोपन सुनभद्र से, और साक्षी पांडे और मयूरी पांडे जी ने सुनना चाहा है बारिश के मौसम पर एक खूबसूरत सा गीत, और इन्होंने विचार हमारे साथ साझा किया है, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो चलिए कार्यक्रम में अब आपके लिए ये बेहतर खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा एफएम 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब जो फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं उसे सुनना चाहा है सोनी, विकी, शेखर और आदित्य ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल भेजा है और इनकी फरमाइश है फिल्म हीरो का ये गीत।

0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन पसंद गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी भावनाओं को नई अभिव्यक्ति दी होगी। यदि आप भी अपने प्रियजनों के लिए कोई पसंदीदा गीत डेडिकेट करना चाहते हो या फिर अपनी यादों से जुड़ा कोई गीत हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvanioobra@gmail.com। आपका हर ईमेल हमारे लिए अनमोल है और आपकी फरमाइश हमारे इस संगीत सफर को और भी आत्मीय बनाती है। अपनी फरमाइश हमें इस ईमेल पते पर भेजिए। हो सकता है अगली बार आपके नाम और आपकी पसंद का गीत इस मंच के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी रानी राश्री को। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल के माध्यम से आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

0: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा कल प्रातः 5:50 पर। अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।